0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

अस्माकं सन्निधिस्सन्निधिं क्रियात् विमलपटी कमलकुटी पुस्तक रुद्राक्षशस्तहस्तपुटी कामाक्षि पक्ष्मलाक्षी कलित विपंची विभासि वैरिंची वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ गुरवे सर्वलोकानां।

0: वरिम्ना प्राथस्व
1: ब्रह्मा जज्ञानं प्राथमं पुरस्ताद्विसीये मतस्सुरुचो वेन आवह
0: सबुध्न्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च यो निमसातश्च विवाह हिरण्य

0: सूर्यस्य रश्मिषु येषा आमप्सु सदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। कृणुष्व पाजः प्रसीतिन्न पृथ्वी याहि राजे वामा वाँ इभेन। तृष्वीमनुप्रसीतिन्द्रूणाणोऽस्ता आसि विद्या रक्षसस्तपिष्ठैः।
1: तव भ्रमासा आशुया पातन्त्यनुस्पृशधृषताशोषु चानः।
0: तपूगुष्यग्ने जुह्वा आपतङ्गा न सन्दितो विसृज विश्व गुल्काः। प्रतिस्पशो विसृजतूर्णीतमो भवा आपायुर्विशो अस्य अदब्धः। यो नो दूरे अघशज्ञसो यो अन्त्यग्ने माकिष्टे व्यथिरादा धर्षीत्। उदग्ने तिष्ठ प्रत्यातानु

0: आजर्षिः प्रजापातिगृहीतया त्वया मनो गृह्णामि प्रजाभ्यः अयम् पश्चाद्विश्वव्याचास्तस्य चक्षुर्वैश्वव्यचसम् वर्षाश्चाक्षुष्यो जगाति वार्षि जगत्यार्क्सामृक्सामाच्छुक्रः शुक्रात् सप्तदशः सप्तदशाद्वयी रूपम् जमदग्निर्ऋषिः प्रजापातिगृहीतया त्वया चक्षुर्गृह्णामि प्रजाभ्यः इदमुत्तरात् स्वस्थस्य श्रोत्रज्ञसौवम् शरच्छ्रौत्र्यानुष्टुप्शा आरदी अनुष्टुभा ऐलमैलान्मन्थि मन्थिना एकविज्ञेश एकविज्ञेशाद्वयी राजम् विश्वामित्रऋषिः प्रजापातिगृहीतया त्वया श्रोत्रम् गृह्णामि प्रजाभ्यः इयमुपरि मतिस्तस्यैवाङ्मात्या हेमन्तो वाच्यः पङ्क्तिर्हैमङ्क्ति पङ्क्त्ये निधनावन्निधनावत आग्रयन आग्रयनात्रेणवत्रयस्त्रिज्ञासौ त्रेणवत्रयस्त्रिज्ञासाभ्याज्ञाशाक्वररैवते विश्वकर्मऋषिः प्रजापातिगृहीतया त्वया वाचम् गृह्णामि प्रजाभ्याः लोकम् प्रणता अस्येन्द्रम् विश्वाः इति चतुर्दशोऽध्यायः ॐ
1: ॐ नमः शिवाय. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Arey re re re. Chalo, tera kalyan ho jaye. Ja. अब आगे उद्दंडता नहीं करना. बोले नहीं करेंगे महाराज. बच गए. ये तो नारद जी की कृपा से बच गए. भगवान शिव को कितना कष्ट हुआ होगा उस पर्वत को दबाए रखने में. शंकराचार्य जी उधर भी संकेत कर रहे हैं. बक्षस्ताडन मंतकस्य कठिना पस्मार सम्मर्दनम भूभित पर्यटनम. अब आप पहाड़ों की चोटियों में नंगे पांव घूमते रहते हो, कभी इस पहाड़ कभी उस पहाड़, और बर्फीले पहाड़ में भी चलना पड़ता है, कटीले पहाड़ में भी चलना पड़ता है, पत्थरों में भी चलना पड़ता है. भूभृत, भू माने पृथ्वी, भूभृत माने पर्वत. भूभृत पर्यटनम नमत सुरसिरा कोटीर संघर्षणम. और हमने देखा है स्वर्ग के देवता लोग भी, बड़े बड़े देवता लोग भी बढ़िया बढ़िया रत्न से जटित मुकुट पहनकर आते हैं और आपके चरण में सिर रगड़ते हैं. लेकिन वो लोग गलती क्या करते हैं, मुकुट उतार के रखकर खाली सिर से आपके चरण में सिर रखकर सिर रगड़ते, तब तो आपको चरण में कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन वो अपने मुकुट के सहित रगड़ते हैं.

0: उनके हृदय में जरा भी दया नहीं है कि इस मुकुट के कारण रगड़ने से उनके चरण में कितना कष्ट होगा। उनके हृदय में जरा भी दया नहीं होती। बक्षस्ताडन मंतकस्य कठिना, और आप मना भी नहीं कर सकते हो, आप मना भी नहीं कर सकते। हम तो नेपाल में रहते हैं, प्राय करके ठंडियों में वहीं रहते हैं। अब काठमांडू में माइनस में जाता है ठंडी जनवरी में, दिसंबर जनवरी वो ठंडा तो होता ही है जनवरी में। तो भक्त लोग आते हैं तो आप लोगों को तो पता ही है, कोई अति श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं, कहते महाराज हम आपके चरण को धो के पान करेंगे और चरण की पूजा करेंगे। बोले चरण धोएंगे फिर उसकी पूजा करेंगे। अब ठंडी में चरण खोलकर दे तो न दे तो उनकी श्रद्धा, और दे तो अपने लिए पांव ठंडी से मरना पड़ेगा, क्या करे बोलो, नहीं भी नहीं कर सकते। हां करते तो मुसीबत अपनी ही है, अब मांगते हैं तो देना ही पड़ता है। चरण दो पानी डालते हैं, रगड़ते हैं, तब तक तो पांव इतना ठंडा हो जाता है, है? फिर फटाफट, अरे जल्दी करो कहना पड़ता है, तो फटाफट फिर तबलिया से पूछेंगे, मोजा लगा देंगे, तब तक तो ठंडा हो चुका होता है भाई। इसी तरह भगवान शिव, हम जीव का तो यह हाल है तो भगवान शिव का क्या हाल होगा। स्वर्ग से देवता लोग रोज प्रणाम करने के लिए आते हैं, कहते हैं महाराज कैलाश में खड़े होकर, महाराज आप चरण दीजिए, हम प्रणाम करेंगे आपके चरण में ही प्रणाम करेंगे। हमारे एक भक्त ने कहा, किसी ने कहा कि संतों के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करो संतों को, चरण स्पर्श न करो। बोले क्यों? बोले हम जीव हैं, अशुद्ध रहते हैं, बहुत पापों से भरा हुआ है हमारा जीवन, तो यदि हम संतों के चरण का स्पर्श करेंगे तो फिर पावर हमारा पाप चरण से महात्मा में चला जाएगा। है? क्या जाएगा? हमारा पाप हमारे स्पर्श करते ही है कहां जाएगा? महात्मा में चला जाएगा। इसलिए भक्तों का पाप महात्मा में संक्रमण न करे, इसके लिए चरण स्पर्श न करो। अच्छी बात है। बोले दूसरे महात्मा ने यह कहा, क्या कहा? कि कोई चरण स्पर्श करेगा तो संतों का पुण्य भक्तों में चला जाएगा। यह भी तो गड़बड़ है कि नहीं, बोलो। संत सुबह 4 बजे उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर जप करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, आत्मचिंतन करता है, ने? और उसके द्वारा प्राप्त जो पुण्य है, एक भक्त 8 बजे तक सो गया, 9 बजे ना धोकर आया, छू लिया और सब लेके चला गया, है? गड़बड़ हो गया कि नहीं, बोलो। संतों की सारा पुण्य लेके गया, इसीलिए चरण छूना नहीं देना चाहिए या चरण नहीं छूना चाहिए। हे भगवान, ऐसे ऐसे व्याख्या करते हैं। हम कहते हैं कि तुम इतने कमजोर संत हो, तुम इतनी कमजोर संत क्यों हो कि भक्त तुम्हारे चरण छू ले और भक्त का पूरा पाप तुम्हारे में आ जाए, तुम इतनी कमजोर संत हो, हैं? कमजोर संत इसकी व्याख्या करेगा वो, और तुम संत हो तो कंजूस हो, तुमको पुण्य किस लिए चाहिए बोलो? तुमने मां छोड़ी, बाप छोड़े, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, धन छोड़ा, दौलत छोड़ा, पुण्य किस लिए चाहिए तुम्हें बोलो? और महात्मा होने के बाद भी मेरा पुण्य मुझे चाहिए, भक्त को नहीं देंगे। और भक्त से दक्षिणा लेंगे और उनको पुण्य नहीं देंगे? कंजूस, कंजूस कहीं का है? भक्त दक्षिणा देगा तो लेगा कि नहीं, बोलो? दक्षिणा लेने है और पुण्य नहीं देना है उसको, ये तो बदमाशी है, सारा सर बदमाशी है। तुम्हें पुण्य की क्या जरूरत है? तुम तो ज्ञान मार्ग में चले हो, ज्ञान मार्ग में पुण्य की आवश्यकता नहीं है। तुमको मर के फिर स्वर्ग जाना है क्या? जो पुण्य चाहिए बोलो। चित्त शुद्धि तो तुमने जो भजन की है उससे चित्त शुद्ध हो गया। चित्त शुद्धि के बाद जो पुण्य है वो भक्तों को जाता है, तो जाए ना तो बेचारा वो दक्षिणा तो दे रहा है, नहीं तो क्यों आएगा तुम्हारे पास, क्यों प्रणाम करेगा, क्यों दर्शन करेगा? बोल। पुण्य जाएगा करके डरने वाला भी कमजोर साधु, पाप आएगा करके डरने वाला भी कमजोर साधु। तुम ज्ञान निष्ठा में स्थिर हो जाओ और पुण्य और पाप का क्या हिसाब करते हो तुम भाई? किसी को चरण छू करके भी मत कहो, किसी को चरण न छू करके भी निषेध न करो। तुम राग द्वेष से रहित हो जाओ भैया, तुम अपने स्वरूप में अवस्थित रहो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे काम में न आने वाला पुण्य, शास्त्र ने कहा कि नहीं? पुण्य भी मोक्ष के लिए प्रतिबंधक है। यदा पश्य पश्यति रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनम परम साम्यम उपेति। विद्वान तो पुण्य और पाप दोनों से असंग होकर परम निरंजन साम्य ब्रह्म में स्थित होता है। तुम पुण्य को इकट्ठा करके रखो, जब तुमको ब्राह्मी निष्ठा आ जाए तो वो पुण्य तो ऐसे ही बेकार चले जाएगा। अब बेकार जाने के जगह भक्तों को, दो चार भक्तों को मिलता है तो मिलने दो ना भाई, क्या हर जाए? कल तुम फिर भजन कर लो, आज का पुण्य कोई एक भक्त लेके जाता है, जाने दो, कल फिर भजन कर लो। कल का भक्त पुण्य फिर दूसरा भक्त ले जाता है, ले जाने दो, फिर भजन करो। पुण्य ले जाते हैं भक्त, उससे क्या तुमको कमी पड़ेगी पुण्य की? क्या एक दिन खाली भजन करना है तुमने? जीवन भर भजन करना है, सबको छोड़ दिया है, करते जाओ, पुण्य का खजाना बनाओ। ले जाते हैं भक्त, ले जाए, चरण स्पर्श करके चरण तुम्हारा पुण्य ले जाते हैं तो ले जाने दो भाई, मत रोको है? और तुम्हारे पास पुण्य हो फिर भक्तों का पाप आ जाएगा, ये क्यों डरते हो भाई है? अग्नि ये डरती है कि पूस के महीने में, जनवरी के महीने में ठंडी आ जाएगा, अग्नि डरेगी? बोलो, अग्नि डरेगी जनवरी के महीने में ठंडी आ जाएगा? अरे भाई, जनवरी के महीने में ठंडी आए तो आवे, अग्नि को क्या फर्क पड़ने वाला है? शंकराचार्य जी अपने भाव को यहां ये व्यक्त करते हैं। वक्षस्ताड़नमंतकस्य कठिन अपस्मारा सम्मर्दनम भूभृत पर्यटनम नमत सुर ऋषिरा कोटीर संघर्षणम। सुर शिर कोटीर, देवताओं ने जो मुकुट पहन रखा है मणियों का, उन मुकुट के सहित आपके चरण में जब प्रणाम करते हैं तो वो मुकुट से आपके चरण में घर्षण होता है, तो कितना चोट लगता होगा आपको। तो फिर क्या करें महाराज? कर्मेदम, आपका ये जो कर्म है बड़ा कठिन कर्म है। कर्मेदम मृदुलस्य तावक पदद्वंदस्य और आपके जो चरण हैं दो चरण फिर इतनी कोमल हैं, इतनी कोमल हैं कि पार्वती के हृदय में रहते हैं। और यदि आपके चरण कठोर होते फिर पार्वती के हृदय में कैसे रहते, बोलो। इसका मतलब ये पक्की है कि आपके चरण बहुत कोमल है, है? ऐसा नहीं कि एक काम करते करते आपका पांव भी कठोर हो गया हो। कठोर होता तो पार्वती अपने हृदय में रखती ही नहीं, निकाल के फेंक देती। बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है, इसीलिए तो अपने हृदय में रखती है। तो मुझे चिंता है महाराज, आपको कितना कष्ट होगा। बोले क्या चाहते हो तुम, बोलो। मच्चे तो मणिपादुका विहरणम, मैंने एक बढ़िया जूता तैयार करके रखा है, बढ़िया जूता तैयार करके रखा है, आपके चरण के नाप का ही है। हा मच्चे तो मणिपादुका, मेरा चित्त रूपी रत्नों का जो पादुका है, चरण का, चरण पादुका, मेरा मन रूपी आपके पादुका है, मणिपादुका, मन रूपी चित्त रूपी मणिपादुका है मेरे पास, उस पादुका को आप धारण करिए, अपने चरण में रखिए भाई। विहरणम संभो सदांगी क्रू, अरे तू कुछ दिन तुम अपने चित्तरूपी चरण मुझे दे देगा, फिर कुछ दिन के बाद तुम मांग के ले जाएगा तो? बोले नहीं नहीं महाराज, एक बार आप पहन लो, हम कभी भी वापस लेने वाले नहीं है। आपको दे दिया सो दे दिया बस। और विहरणम करो, मेरे चित्तरूपी पादुका को आप अपने चरण में धारण करके, चाहे यमराज को लात मारो, चाहे अपस्मार को दबाओ, चाहे रावण के पर्वत दबाओ, चाहे पहाड़ों की चोटी में, चाहे जंगलों में, कंदराओं में, जहां घूमना हो घूमो, आपके चरण सुरक्षित रहेंगे। हाँ, और मेरा मन चित्त रूपी पादुका घिसने वाला भी नहीं है। हाँ, इतना मणि है ना, हीरा बहुत कठिन होता है, लेकिन यह है कि कठिन होगा तो फिर मैं कैसे पहनूंगा? बोले आपके चरण के लिए बहुत नरम है, उन लोगों के लिए कठिन है। देख लो, भक्तों का हृदय परमात्मा के लिए सॉफ्ट होना चाहिए और संसारियों के लिए कठोर होना चाहिए। संसार के प्रति कठोर, मैं भगवान के भजन में लगूंगा तो फिर संसार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, ये सोचने लग जाओगे तो फिर तुम संसार के लिए नरम हो गए तुम्हारा हृदय, फिर भगवान के लिए कठोर हो जाएगा। तो भगवान के लिए नरम हो, संसार के लिए कठोर, यानी जूते का नियम क्या होना चाहिए, बाहर से कठोर हो अंदर से नरम हो। बस जूता यदि अंदर से नरम होगा तो पांव में घर्षण नहीं होगा, चुभेगा नहीं, पांव को काटेगा नहीं, और बाहर से कठोर होगा तो घिसेगा नहीं। हा, ये शंकराचार्य जी ने, मैंने ऐसी जूता तैयार किया है, आपके चरण के लिए बहुत नरम है, संसार के लिए कठोर है। हा? तो आप महाराज जूता पहन लीजिए। और आगे क्या कहते हैं, बक्षस्ताड़न संकया विचलितो वैवस्वतो निर्जरा कोटिरोज्ज्वल रत्न दीप कलिका नीराजनम कुर्बते दृष्ट्वा मुक्ति वधुस्तनोति निवृता श्लेषं भवानी पते यच्चेतस्तव पाद पद्म भजनम तस्येह किं दुर्लभम। जिसका चित्त आपके चरण कमल की पादुका बन गया है, उसके लिए फिर संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब चीज सुलभ हो जाएगा। वक्षस्ताडन संकय विचलितो वैवस्वतो, उस व्यक्ति को देखकर यमराज भी डरता है। किस व्यक्ति को देखकर? जिसका चित्त रूपी पादुका भगवान शिव के चरण में फिट हो गया, जिसके चित्त रूपी हृदय रूपी पादुका जूता भगवान शिव के चरणों में फिट हो गया है, ऐसे व्यक्ति को देखकर यमराज भी डरता है। क्यों डरता है? अरे रे रे, ये तो भगवान का भक्त है, और यदि मैंने कोई खुदा खास्ता इसके छेड़खानी की तो एक लात भगवान मारेंगे। मार्कंडेय ऋषि के समय में तो बिना जूता का मारा था, अब तो इन्होंने जूता भी पहन लिया है, है? मार्कंडेय ऋषि के समय में तो बिना जूता के लात से मारा था, अब तो इन्होंने जूता भी पहन लिया है। कौन से जूता? इस व्यक्ति के चित्त को ही भगवान ने जूता बना लिया है, अब तो जूता पहनकर लात मारेंगे। बोलो, तो यमराज की तो सांस उड़ जाएगी अपने आप। इसलिए वक्षस्ताडन संकया विचलिता, शिवजी मारेंगे लात करके, पहले से ही वो दूर भाग जाएगा। वक्षस्ताडन संकया विचलितो कौन? वैवस्वता, सूर्य का पुत्र। यमराज सूर्य का पुत्र है वो, विवस्वान सूर्य, तस्य अपत्यम वैवस्वता, सूर्य का पुत्र यमराज। वैवस्वतो और निर्जरा, निर्जरा माने कभी बूढ़ा नहीं होने वाले, कभी बूढ़े न होने वाले निर्जरा कौन? देवता। देवता कभी बूढ़े नहीं होते। वो क्या करते हैं? कोटि रोज्ज्वल रत्न दीप कलिका नीराजनम कुर्वते, ऐसे भगवान के परम भक्तों को चुनुने अपने चित्त रूपी पादुका भगवान को अर्पण किया, भगवान के चरण में लगा दिए है, और जिसके चित्त रूपी पादुका को भगवान ने अपने जूता बना लिया है, ऐसे भक्तों को तो देवता लोग भी अपने मुकुट की चमकते हुए मणियों से आरती उतारते हैं। कौन? देवता लोग। किसकी आरती उतारते हैं? भगवान के भक्तों की। आहा, क्या बढ़िया भक्त है। देखो, हमको तो भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ है, और ये इतना महान व्यक्ति है कि जिसके चरण, जिसके हृदय को ही भगवान ने अपने चरण में धारण कर ली, जूते के रूप में धारण कर लिए, क्या धन्य हो गया ये जीवन। देवता लोग उस ज्ञानी पुरुष के भी भक्तों के अपने मुकुटों से, मुकुट में लगे हुए रत्नों से उन भक्तों की आरती उतारते हैं। निर्जरा कोटि रोज्जल रत्न दीप कलिका नीराजनम कुर्वते, दृष्ट्वा मुक्ति बधूस्तनोति, इन सबको देखकर। किसको देखकर? उस व्यक्ति को देखकर यमराज डरता रहता है, उन व्यक्तियों को देखकर देवता लोग भी अपने श्री मुकुट के रत्नों से आरती उतारते रहते हैं, ऐसे परम भक्तों को देखकर। दृष्ट्वा मुक्ति बधुस्तनोति निवृता शेषम भवानी पते। हे भवानी पति पार्वती पते, हे शिवा हैं मुक्ति वधु, मुक्ति रूपी स्त्री, मुक्ति रूपी स्त्री भी ऐसे भक्तों को देखकर बरबस ऐसे भक्तों से आलिंगन करने के लिए उद्भूत अपने आप ही प्रवृत्त होती है। दृष्ट्वा मुक्ति वधु स्तनोति निवृत्त अश्लेषम, अंकमाल करने के लिए आती है अपने आप ही। उस भक्त को मुक्ति खोजना नहीं पड़ता है, मुक्ति के लिए फिर और कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा। किस भक्त को? जिसने अपने चित्त रूपी जूते को भगवान शिव के चरण में फिट कर दिया है, ऐसे को देखकर मुक्ति वधु अपने आप ही उसको वरण करने के लिए दौड़े दौड़े आती है। जंगल में रहे, चाहे बंबई में रहे, चाहे हरिद्वार रहे, चाहे दिल्ली रहे, चाहे कलकत्ते रहे, चाहे यहां रहे, चाहे इलाहाबाद रहे, आबाद रहे, आजाद रहे, है? मुक्ति वधु पीछे पीछे दौड़ती है भाई उसके लिए। तो वो तो जीते जी वरण कर लेती है मुक्ति वधु, मरने की बात की तो बात छोड़ दो, जीते जी वरण करती है। भक्षस्ताड़न संकया विचलित हो, क्योंकि वो भी समझती है ये भगवान का भक्त है, इसलिए कभी मरेगा नहीं तो कभी हमको पति वियोग होने ही नहीं पड़ेगा भाई, ऐसे ऐसे शादी करने मिल जाए तो भक्ति मुक्ति वधु खुश हो जाएगी, है होगी कि नहीं बोलो ना। भक्षस्ताड़न मंतकस्य विचलित संकया विचलितो वैवस्वतो निर्जरा कोटिरोज्ज्वल रत्न दीप कलिका नीरा जनम कुर्वते। दृष्ट्वा मुक्ति वधु स्तनोति निवृता श्लेषम भवानी पते। ये यच्चेतस्तव पाद पद्म भजनम, जिसका चित्त आपके चरणों के आश्रय ले लिया है, पाद पद्म भजनम, भजनम माने भज सेवा, जिसका चित्त परमात्मा के चरण पादुका बनकर सेवा कर रही हो, तस्सेव किम दुर्लभम, ऐसे व्यक्ति के लिए संसार में दुर्लभ कुछ भी नहीं, क्योंकि मोक्ष वधु तो उसके सहचरी अपने आप आलिंगन कर रही है। तो मोक्ष वधु उसको आलिंगन कर रही है तो संसार का भोग की कमी होगी उसको, ऐश्वर्य की कमी होगी? शिव जिसके हृदय में अपने चरण रखे हुए हैं उसके लिए क्या किस चीज की कमी होगी? सर्वस्व उसको प्राप्त होगा, भोग मोक्ष सब कुछ प्राप्त होगा। किम दुर्लभ, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि तुम्हारे पास कोई कमी है, तुम्हारी कमजोरी से तुम गरीब और दरिद्र दीन दुखी हो रहे हो। तुम्हारी कमजोरी क्या है? उस चित्त को तुम भगवान शिव के चरण पादुका नहीं बना पा रहे हो बस। हां देख लो, शिवानंद लहरी के कुछ श्लोक बहुत रत्न हैं। एक श्लोक हमने पहले भी कहा था, बड़े प्रिय श्लोक है। दूसरा श्लोक ये आ रहा है, ये श्लोक बहुत उत्तम श्लोक है, ठीक से समझना बहुत जरूरी है इस श्लोक का। और यदि इस श्लोक का भाव यदि किसी ने समझ लिया उसका जीवन परम आनंद और मंगलमय हो जाएगा, फिर उसके लिए संसार में कोई विषाद की घड़ी उपस्थित होगा ही नहीं। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचमखिलम क्रीडा मृगास्ते जना यत्कर्माचरितं मया च भवतो प्रीत्यै भवेत्येव तत् शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणम् मत्स्यष्टितम निश्चितम तस्मान् माम करक्षणम पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। इस श्लोक की व्याख्या कल ही करेंगे भाई, क्योंकि अब व्याख्या जाएगा आधा घंटा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahima, presented by Swami Santoshi Mataji. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Goswami ji likhte hain ki yadi mantra mahamani vishay vyalakhe, मंत्र एक ऐसी मणि है जो विषयों के व्याल को दूर करने वाली है, विष को दूर करने वाली है। यूं तो विधाता को भी ये ताकत नहीं है कि हमारे मस्तिष्क में यदि विधिना ने कुछ कठोर लिख दिया है, कुछ कठिनता लिख दी है, तो ब्रह्मा जी चाहे विधि चाहे कि मैं अब इसको बदल दूं, तो विधाता भी हमारे प्रारब्ध के विधिना के विधि को जो हमारे मस्तक पर उसने लिख दिया है, अर्थात जीव ने जो अपने भाग्य में लिखा लिया है, उस भाग्य को मिटाने की बदलने की ताकत ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। स्वयं ब्रह्मा चाहे मैं इसमें कुछ हेर फेर कर दूं, नहीं कर सकते हैं, परंतु इस मंत्र में इतनी बड़ी ताकत है कि वो मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाल कहते हैं मस्तिष्क को, मस्तिष्क में यदि विधिना ने कुछ कठोर लिख दिया है तो उसे मिटाने की ताकत है किसको? बोले भगवान के नाम को, भगवान के मंत्र को। इसलिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस जप के कारण, और ये जप कैसे करना चाहिए? बोले ऐसा नहीं कि ये जप कैसे जपें, भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दस दिशु। भाव से आप नाम लें, कुभाव से आप नाम लें, आलसी आलस में आप नाम लें, और स्वस्थ होकर आप नाम ले, कैसे भी नाम ले। भाव कुभाल अनख आलसु नाम जपत मंगल दश दिशु। नाम, परंतु इस नाम का प्रभाव ऐसा है कि जैसे भी कोई भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम लेगा तो निश्चय रूप से उसका फल तो उसे मीठा ही प्राप्त होगा। जैसे कि मिश्री की डली, मिश्री की डली को आप कैसे, मिश्री को कैसे भी खाएंगे, उसमें मिठास के अतिरिक्त आपकी जिह्वा को और कुछ मिल ही नहीं सकता। किसी भी कैसे भी आप बैठ के खाएं, चल के खाएं, लेट के खाएं, मिश्री आपके मुख में मिठास ही प्रकट करेगी। परंतु वही मिश्री कभी कभी, एक बात ये भी होती है, कभी कभी वही मिश्री किसी पित्त के रोगी को खाने के लिए दे दी जाए तो पित्त के रोगी को मिश्री मीठी नहीं लगती है, उसको बड़ी कड़वी लगती है। और कड़वी मीठी लगने से वो कहते हैं मिश्री ये क्या है, बड़ा कड़वा है। तो यदि कोई मिश्री को कड़वी बताए आपके सामने, आपका अपना अनुभव क्या कहता है, आप उसकी बात मान लेंगे? आप ये बात कभी मानने को तैयार नहीं है कि मिश्री कड़वी है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, आपने उसका स्वाद लिया है, अनुभव किया है, तो आप यही कहेंगे मिश्री कड़वी नहीं होती, मिश्री कड़वी नहीं है। और वो कहे कि मुझे कड़वी लग रही है, तो आप कहेंगे भैया मिश्री तो कड़वी नहीं है, पर हो सकता है तेरी जवान में कुछ विकार हो, तेरे मुख में कोई बीमारी हो जिसके कारण तुझे कड़वी लग रही है, पित्त के कारण तुम्हें मिश्री कड़वी लग रही है। तो वैद्य लोग जानते हैं क्या ऐसे आदमी के लिए क्या उपचार करते हैं, जिसके अंदर पित्त रोग बहुत बढ़ जाता है। जब पित्त बढ़ता है शरीर में तो हमारे अंदर कड़वापन आने लगता है, मुंह में कड़वा कड़वाहट आने लगती है, और उस कड़वेपन में मिश्री भी कड़वे लगने लगती है। तब पित्त की दवाई में वैद्य लोग मिश्री का मिश्रण करते हैं, मिठास मिलाते हैं, और धीरे धीरे पित्त की औषधि हमेशा मीठी होती है, और धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे जैसे औषधि शरीर में पहुंचती है पित्त रोग कम होने लगता है, और उस दवाई के खाने वाले को उसे मिश्री की मिठास उसकी जवान को मालूम पड़ने लगती है। उसी भांति हमारे अंदर भी कभी कभी पित्त का रोग इतना बड़ा हुआ है, ये पित्त कौन सा बड़ा हुआ है, संसार के विकारों का पित्त इतना बढ़ गया है जिसके कारण हमारे मन को ये मिश्री मीठी नहीं लगती है, अर्थात भगवान का नाम मीठा नहीं लगता है। बहुत से लोग कह देते हैं राम राम करते तो हैं पर हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है, कृष्ण कृष्ण करते तो हैं पर कुछ ऐसा लगता नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। राम राम कहने से, शिव शिव कहने से हमें ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ लगता नहीं, उनकी जिव्या में कुछ उसका रस नहीं आता, स्वाद नहीं आता, कुछ मिठास सी नहीं लगती है। बोले कारण, कारण यह है कि उनके अंदर भव रोग बढ़ा हुआ है, संसार का रोग इतना बढ़ गया है, विषयों की वासनाएं इतनी प्रचुर मात्रा में उसके अंदर भर गई है कि उसे संसार के विषय ही अच्छे लगते हैं, संसार के भोग ही अच्छे लगते हैं, संसार की वार्ता ही अच्छी लगती है, संसार के ये कहना सुनना बोलना विचारना संसार के प्रति ही उसे अनुराग है, वही अच्छा लगता है, और उसी में वो निरंतर रमण करता है। जैसे नारायण गुबरेला होता है ना, गुबरेला एक गोबर में पैदा होने वाला कीड़ा, गोबर का कीड़ा उसे कहते हैं गुबरेला। उस गोबर के कीड़े को गोबर के अंदर जो आनंद मिलता है उसे गोबर से निकाल करके किसी साफ सुथरी जगह में रख दो तो धीरे धीरे खिसक खिसक कर वो वही उसी गंदगी में जाकर अपने को प्रसन्न पाता है। उसी तरह से हमारा मन उस गुबरेले के समान हो गया है कि जो संसार में संसार रूपी गोबर के अंदर रहकर अपने को सुखी पाता है, क्योंकि बहुकाल बहुत समय से इसे अभ्यास हो गया है, संसार के सहारे जीने का इस मन को आदत पड़ गई है। याद रखना, मन हमेशा जीवित रहने के लिए, मन हमेशा चलने के लिए उसे किसी वैसाखी की आवश्यकता पड़ती है, बिना किसी सहारे से किसी का मन नहीं चल सकता है। एक बात याद रखें, मन कहते हैं ना, मन तो कभी आपने गंभीरता से अपने मन के लिए सोचा कि ये मन आखिर कैसा है, ये मन का रूप क्या है, ये मन क्या चीज है? यदि आपने विचार किया होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आपने अपने आप में मन का रूप खोजने के लिए जब आप चले होंगे तो आपको मन किसी न किसी मन का वास्तविक अपना कोई रूप न होते हुए भी मन अपने रूप को बना लेता है। इसलिए ये मन बहुरूपिया है, बहुरूपिया। बिना किसी मन जब कभी भी मिला तो किसी न किसी रूप में मिला, किसी न किसी आकार में मिला और किसी न किसी सहारे से मिला। ये मन वास्तव में जिस मन जिसके सहारे चल रहा है, संसार के सहारे चल रहा है, तो संसार का आकार इस मन ने ग्रहण किया हुआ है। और संसार का आकार संसार को क्यों पकड़ा हुआ है? बोले संसार को सत समझा है, इसलिए संसार के सहारे इस मन को जीने की आदत पड़ चुकी है बहुत समय से, अभ्यास। इस अभ्यास के कारण उसे संसार के सहारे चलना बड़ा सरल सुगम लगता है। पर कहो कि इस मन को संसार से हटाकर राम के सहारे चलाओ, भगवान के सहारे चलाओ, अभ्यास नहीं है ना, तो बड़ी घबराहट होती है। बात केवल अभ्यास की है। अभ्यास की बात ये है कि एक आदमी बिल्कुल नया नया ड्राइविंग करना सीखा है और एक बहुत समय से सीख गया है, वो निष्णात है, और जो हमेशा अच्छा ड्राइवर है, जिसने गाड़ी चलानी बहुत बढ़िया सीख ली, उसे गाड़ी चलाते हुए कोई टेंशन नहीं होती, बल्कि वो गाड़ी चलाते हुए एक आनंद का अनुभव करता है और उस आनंद के साथ हंसता बोलता खाता बात करता हुआ बड़ी प्रसन्नता के साथ गाड़ी चला रहा होता। और जो बिल्कुल नया है, जिसे अभ्यास नहीं है, उसे घबराहट है, पसीने आते हैं, हाथ पांव ठंडे होते हैं, उसे लगता है, डर लगता है कहीं गाड़ी लग न जाए। तो ये क्या है? अभ्यास है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि हमें भगवान के सहारे चलने के लिए कहा जाए तो पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर यही निश्चय नहीं है कि भगवान है या नहीं। जब हम सुनते हैं तब हमें लगने लगता हाँ भगवान है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या है भी कि जब कोई विपत्ति आती है और हम कुछ चाहते हैं, हमारे मन के अनुकूल हमें नहीं मिलता है, तो हमें शंकाएं होने लगती है। अरे हमने भगवान को इतना याद किया था और हमें ये चीज नहीं मिली, इसका मतलब भगवान है भी कि नहीं भी है। फल मिल जाए, इच्छा पूरी हो जाए तो हम सोचते हाँ ये बात भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान है। और नहीं मिला, कुछ चाहते थे नहीं मिला, तो प्रश्न शंका होने लगती है भी कि नहीं है। तो कहने का अर्थ था मेरा कि जो इस प्रकार में है नहीं है नहीं है नहीं, इनमें उलझे हुए हैं, द्वंद है, दृढ़ता नहीं है, स्पष्टता नहीं है और स्पष्ट बुद्धि है, निश्चय दृढ़ नहीं है, और ऐसे में हम कहें कि हमारा मन भगवान में। माता जी आप बात तो बहुत अच्छी कहते हैं, परंतु भरोसा विश्वास निश्चय जो होना चाहिए नारायण, वो नहीं हो पाता है, डगमगा जाता है। तो परिणाम तो ये है कि हमारे मन में हमें दृढ़ करना होगा, निश्चय करना होगा, मन को सहारा देना होगा, मन को राम के सहारे शिव के सहारे से चलाने की आदत पड़ेगी, तो तब शिव शिव नाम रटते हुए शिवमय नाम हो जाए, मन हो जाए, कृष्ण कृष्ण कहते हुए कृष्णमय मन हो जाए, राम राम कहते कहते राममय मन हो जाए, हमारा मन का आकार भगवदाकार हो जाए, भगवतमय हो जाए। इसलिए हमें इतना अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास कब बढ़ेगा? धीरे धीरे, ज्यों ज्यों ये मन भगवान की ओर नाम की ओर बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों इस मन को रस की अनुभूति होने लगेगी, रस के आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। और इसीलिए भगवान के नाम का सतत सतत जप करना चाहिए। और इस नाम के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता, क्या ऐसी, क्या नाम के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, कठित क्वंक भाल के विधिना का लिखा हुआ मस्तक का कठोर भी बदल जाता है। भगवान शिव दृढ़ तपस्या में है, शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया, अर्थात इतने वैराग्यवान हैं, उन्हें जगत की कोई चिंता नहीं। परंतु माँ गौरी ऐसे वैराग्य मन में अपने प्रति अनुराग, शिव के हृदय में अनुराग प्रकट करना चाहती है। और माँ ने नमः शिवाय इस मंत्र का जप किया, भगवान के चरणों में वंदन किया। और ऐसे भगवान शिव जो ज्योतिष के सूर्याय, अर्थात सूर्य ज्योतिष की गणना में सूर्य से ये गणना आरंभ होती है। ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष ब्रह्म का नेत्र है। ऐसा नहीं है कि ये ज्योतिष भी एक शास्त्र है, धनुर्वेद आयुर्वेद ज्योतिष ये स्कल्प ये सब वेद के अंग माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र तो है, परंतु उसकी गणना आरंभ होती है सूर्य के साथ। सूर्य के साथ जो 27 नक्षत्र हैं और उन नक्षत्रों में जो तारा मंडल है उसके साथ ये गणना आरंभ होती है। और ये सूर्य स्वयं किसके आश्रित हैं, जिससे सारा सूर्य चलता है, ये सूर्य के रूप में स्वयं भगवान शिव के संकृपा से, भगवान शिव इनके अधिष्ठान देव हैं, अर्थात अधिष्ठात्र देव हैं। भगवान शिव से सूर्य और सूर्य से, मैंने कल आपको कहा था, सूर्य चंद्र वंदी नयन, इसलिए भगवान शिव को शिव के समान ज्योतिषाचार्य और कोई है नहीं। ज्योतिष विद्या में, वेदांत विद्या में, महिमा में शिव से बढ़कर के और दूसरा कोई देव नहीं नारायण। इसलिए भगवान सूर्य जिनके लिए नित्य वंदना करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव जो स्वरूप है, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले, अर्थात दक्ष यज्ञ क्या, दक्ष के अभिमान को, कर्मा अभिमानी देव है दक्ष, अर्थात जो लोग दक्ष के अंदर अभिमान हो गया था, ये कथा सुनी है कि जिस अभिमान के कारण शिव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने सोचा कि मैं उन्हें अपने यज्ञ में आमंत्रण नहीं दूंगा, भगवान शिव को नहीं, शंकर को नहीं बुलाऊंगा। दक्ष के मन के अंदर ये अज्ञान था, ऐसी पौराणिक कथा आती है कि एक बार प्रजापतियों की सभा लगी हुई थी। दक्ष बनाता है, दिए बनाता है, बर्तन बनाता है, मूर्तियां बनाता है, ये सब आकार बनाता है, वो भी प्रजापति है। और इन सब प्रजापतियों के अध्यक्ष कौन है, बोले सकल सृष्टि के अखंड अखंड ब्रह्मांड के जो अधीश्वर है, समस्त प्रजा के जो पति है, बोले वो कौन है, भगवान शिव है। भगवान ने ये सृष्टि बनाई, ये मूर्तियां बनाई। इस पर मुझे एक सुंदर सा प्रसंग स्मरण हो रहा है कि एक भक्त भगवान से वार्तालाप कर रहा था, भक्त और भगवान का संवाद चल रहा है। और मधुर संवाद में कभी कभी भक्त ऐसे भी होते हैं जो भगवान के साथ झगड़ा भी करते हैं, जहां अतिशय प्रेम होता है ना, वहां झगड़ा भी होता है। भक्त अपने भगवान से कह रहा, भगवान आप क्या समझ रहे हैं कि मैं ही बड़ा हूं, नहीं आपके बड़े वाली कोई बात नहीं है, बड़ा तो मैं हूँ आपसे, आप बड़े नहीं हैं, आपसे बड़ा मैं हूँ। भगवान कहते हैं अच्छा तू मेरे से बड़ा है, हाँ मैं आपसे बड़ा हूँ। भगवान ने कहा मुझे इस बात में तू मेरे से बड़ा बन, मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तू अपने आप को जो मुझसे बड़ा बता रहा है, बन रहा है, तो आखिर बड़ा बनने का कारण क्या है, बात क्या है, ये मुझे समझा दे। भक्त ने कहा प्रभु बात यह है कि आपका और मेरा काम एक है, आप भी मूर्तियां बनाते हैं, आपसे बढ़कर के शिल्पकार और कौन, ऐसी मूर्ति कब से ये सृष्टि चली आ रही है, और जब से ये सृष्टि चली आ रही है इस सृष्टि में असंख्य असंख्य प्राणी, और उन असंख्य असंख्य प्राणियों में एक मनुष्य है, असंख्य असंख्य असंख्य जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने मनुष्य भगवान ने पैदा कर दिए, पर आज तक कभी किसी की सकल से सकल, अकल से अकल किसी की मिलती नहीं। भले ही कहते हैं ये हम सकल है, पर कहीं न कहीं भगवान का सांचा सबके लिए अलग अलग अलग है, एक सांचे में भगवान ने किसी को नहीं डाला, अर्थात सबकी अलग एक ऐसी विलक्षण, इतना बड़ा शिल्पकार भला और कौन हो सकता है। आपने भी मूर्तियां बनाई, मैं भी मूर्ति बनाता हूँ, भगवान ने कहा इसमें और बड़ी बड़ी बात क्या है, फिर तू भी मूर्ति बनाता है, मैं भी मूर्ति बनाता हूँ, तू कहता है तो ठीक है, पर इसमें बड़े होने वाली बात क्या है। कहा बड़े होने वाली बात ये है कि आपने ये जगत में मनुष्य आपने मूर्ति बनाई, इसीलिए हम कहते हैं कितनी मूर्ति हो, अर्थात मनुष्य भगवान की बनाई हुई मूर्ति है। कहा महाराज मैंने भी मूर्ति बनाई है। तब भगवान ने पूछा इसमें बड़े होने वाली क्या बात है? बड़े होने की बात तो है ये आपकी बनाई हुई जितनी मूर्तियां हैं ना, ये सारी की सारी मेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं, मेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं। ये जो मंदिरों में कहीं पर भी हम मूर्ति रखी हुई है तो ये किसकी बनाई हुई मूर्तियां हैं, चाहे पट मूर्ति हो चाहे स्थिर मूर्ति हो, जो भी मूर्ति है वो मूर्ति को बनाने वाला कोई मूर्तिकार है ना। तो कहा कि इस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई और सबने उस मूर्ति की पूजा की, उसको हाथ जोड़ा, उसको सराहाया, उसे आंखों में रखा, उसकी प्रसन्नता की, प्रशंसा की, वाह क्या बढ़िया बनाया, क्या बढ़िया बनाया। ये सारी प्रशंसा करने वाला, सराहने वाला, वाई वाई करने वाला, तारीफ करने वाला, उस मूर्ति को चित्त में रखकर उसकी पूजा करने वाला कौन है? ये भगवान की मूर्तियां नहीं है तो और कौन है? कहा प्रभु इसलिए मैं आपसे बड़ा हूँ। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तू बड़ा बन जा। तो कहने का अर्थ था मेरा, ये तो एक भक्त और भगवान का संवाद है कि भक्त भगवान से ये बात कहता है कि प्रभु मैं आपसे बड़ा हूँ। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। तो यहाँ बात चर्चा चल रही थी कि दक्ष है प्रजापति, उन्होंने प्रजा का पालन करना है, उन्होंने सोचा कि मेरे कर्म में मैं सबसे बड़ा हूँ, प्रजापति हैं, प्रजापतियों के अध्यक्ष हैं दक्ष प्रजापति। दक्ष ने सोचा था कि मैं ही बड़ा हूँ। भगवान शिव की सभा में बैठे हुए थे, सब उठकर खड़े हो गए, वो उठे नहीं। दक्ष के मन में ये रंज हो गया। बहुत लंबी कथा है इसके पीछे कि श्रापा श्रापी हुई, भागवत में, देवी भागवत में सब में विस्तार से ये कथा आती है, पर कथा के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी। बात केवल इतना मैं आपको कहना चाहती थी, दक्ष ने सोचा कि मैं शिव के बिना यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में शंकर को निमंत्रण न देकर न बुला करके मैं उन्हें ये एहसास करा दूंगा कि तुम्हारे बिना भी मैं यज्ञ कर सकता हूँ, अर्थात शिव से रहित होकर वे के भी सृष्टि का कार्य चल सकता है। परंतु उसका परिणाम क्या हुआ? वो यज्ञ असफल हो गया, वो यज्ञ विध्वंस हो गया, वो यज्ञ नाश का सृष्टि के लिए नाशकारी होने लगा, वो यज्ञ सृष्टि के लिए अमंगलकारी होने लगा। तो समस्त देवता लोग जाकर भगवान शिव की शरण में गए और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु दक्ष की अज्ञानता के कारण सारी सृष्टि में अमंगल होने जा रहा है, सृष्टि का अनहित होने जा रहा है, हे कृपा निधान, हे आशुतोष, आप प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए, बचा लीजिए प्रभु इस सृष्टि के विनाश से, सृष्टि के अमंगल से, सृष्टि के अशुभ से, आप बचा लीजिए, बचा लीजिए। भगवान शिव ने कृपा की और शिव से ही शुभ उत्पन्न हुआ, शिव से ही सृष्टि का मंगल हुआ, शुभ शिव से ही सृष्टि का कल्याण हुआ। वो देव अर्थात जो सकल जगत के अर्थात अनंतानंत ब्रह्मांड के जो मंगल है, कल्याण है, शुभ है, वही सनातन है, वही शिव है, वही हम सबों की आत्मा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ऐसे भगवान शिव हम सब लोगों के लिए परम मंगलदायी, कल्याणदायी हों, उनका नाम स्मरण करें। वो

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய.
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Vaidik Shanti Mantra, presented by Swami Sri Ariharananda Sagarji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: तो फिर क्या रहेगा? पूर्णम एव अवशिष्यते, यानी जैसे समझ लो कि दृष्टांत में जैसे चल रहे जो घड़ा है उसको पूर्ण कहा ने, तो वो पूर्णस्य पूर्णम को आधा है, यानी कि वो पूर्ण को निकाल लिया जाए, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए. निकालना यानी कि निकालने का अभिप्राय है अविद्या का तिरस्कार कर दिया जाए, आकार का तिरस्कार कर दिया जाए, घट है ऐसा जो हम व्यवहारिक प्रयोग कर रहे थे उनका तिरस्कार कर दिया जाए, तो फिर क्या बचेगा? मिट्टी ही. पूर्णम एव अवशिष्यते. अतः पूर्णस्य पूर्णम आदाय, यहां पर जो पूर्णस्य है उससे लेना है, जो घट को जैसे पूर्ण कहा था ना, वो घट को हमने पूर्ण कहा था, तो वो पूर्ण का पूर्ण को, पूर्णस्य कार्यात्मक जो ब्रह्म दृष्टान में कार्यात्मक ब्रह्म, उनका जो पूर्णम पूर्णम आदाय, या दृष्टान में लीजिए घड़े के अंदर जो मृतिका है उनका ग्रहण किया जाए, तो नाम रूप का क्या हो?

उत्पन्न नहीं करना है, किंतु नाम रूप उपाधि का परित्याग करना ही ये मंत्र का तात्पर्य है। यदि हमारी नाम और रूपाकार दृष्टि हट जाए, नाम और रूप निकल जाए, तो सर्वत्र हमको एकमात्र ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बचेगा। इसको आप सर्प और रज्जु में घटाइए तब भी ये सरलता से इस बात को आप समझ सकते हैं। जैसे सर्प है उसके अंदर जो रज्जु है वो रज्जु ही भरी है, सारे सर्प के अंदर क्या भरा है, सर्प में क्या भरा है, भ्रांति स्थल जो सर्प है, जहां पर आपको सर्प की भ्रांति हो रही, ऐसे स्थल में सर्प दिख रहा है तो सर्प के अंदर क्या भरा है, रज्जु ही भरी है, सर्प में रज्जु ही भरी है, इसलिए रज्जु को क्या कहेंगे, पूर्ण कहेंगे। रज्जु क्या है, पूर्ण है। अब वो जो पूर्ण है, पूर्ण अब सर्प भी पूर्ण है और रज्जु भी पूर्ण है, ऐसा लेना होगा। जैसे सर्प रज्जु पूर्ण कहा तो वो अधः पूर्णम, और सर्प को पूर्ण कहेंगे तो इदम पूर्णम, हो गया। अब ये कहेंगे कि पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, क्योंकि वो जो सर्प है उसकी प्रतीति कहां हो रही है, रज्जु में, रज्जु नहीं होती तो सर्प की प्रतीति नहीं हो रही है, रज्जु में ही सर्प उत्पन्न होता है, रज्जु नहीं होते तो सर्प की प्रतीति नहीं होती। इसलिए उस पूर्ण सर्प से रज्जु को हटा ले, पूर्ण सर्प से रज्जु को हटा ले तो क्या अवशिष्ट रहेगा, रज्जु रूपी पूर्ण ही अवशिष्ट रहेगा, सर्प क्या हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा, सर्प रहेगा नहीं, सर्प तो था ही नहीं, वो तो भ्रांति से क्या हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। तो यदि पूर्ण सर्प से रज्जु को हटा ले, इदम शब्द से जिसको कहा वो सर्प, उनको पूर्ण कहा, उस पूर्ण सर्प से रज्जु को हटा ले तो सर्प वहां रहेगा ही नहीं, रज्जु रूपी पूर्ण ही अवशिष्ट रह जाएगा। तो इससे तत् और त्वम की एकता बताई गई, और इस मंत्र से ये भी सिद्ध हो गया कि ये जो सारा संसार है वो केवल प्रतीति मात्र है, मिथ्या है, वस्तु सत नहीं है। तो ये जो मंत्र है वो संपूर्ण वेदांत का जो है अर्थ इसमें भरा है, और उनका ये प्रतिनिधि मंत्र है, मानो वेदांत का सिद्धांत इसमें बिंदु रूप से भरा है। इसलिए ये निश्चित हो गया कि ये संसार है वो मिथ्या है। भगवान भाष्यकार इसलिए संसार की सत्ता को मिथ्या कहते हैं, और मिथ्या वो है जो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, और सद असत उभय भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम भी ये सोचे कि ये जो त्वम है, त्वम यानी जीव भाव, वो जीव भाव भी कब तक है, जब उपाधि है, और उपाधि कौन सी उपाधि लगी हुई है बताओ, अविद्या। इसलिए कारण शरीर है तब तक जो है वो सूक्ष्म शरीर भी रहेगा और ये स्थूल शरीर, सारा संसार रहेगा।

कारण शरीर अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी तो सर्वत्र मैं हूं अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का अनुभव हो जाएगा। इसलिए कल बताया था कि ये जो मंत्र है वो ईशावास्य उपनिषद का मंगल पाठ है। ईशावास्य उपनिषद है वो मंत्र भाग की उपनिषद है और बृहदारण्यक उपनिषद है वो ब्राह्मण भाग की है। तो ईशावास्य उपनिषद का मंत्र जो है मंत्र रूप जो ईशावास्य उपनिषद का ही व्याख्यान है बृहदारण्यक उपनिषद। मंत्र का व्याख्यान ही ब्राह्मण है, इसलिए वहां पर ये बताया था ना ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीद तद आत्मानम एव अवेद अहम ब्रह्मास्मि इति और तस्मात् तत्सर्वम अभवत। जिससे ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्म मैं हूं। इस प्रकार यदि अविद्या की निवृत्ति हो जाए, जैसे कहा ना पूर्णस्य पूर्णम आदाय, आदाय यानी ग्रहण कर लेने पर, यानी आत्म स्वरूप से एक रसत्व को जब हम आपादित कर लेंगे, यानी कि विद्या के द्वारा जब अविद्या का तिरस्कार हो जाएगा, उपाधिक जो संसार है उनकी निवृत्ति हो जाएगी, तो सर्वत्र हमको मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सर्वत्र हूं इस प्रकार का अनुभव हो जाता है। इसलिए तत् और त्वम की एकता इस मंत्र में बताई गई है, जो संपूर्ण उपनिषद का तात्पर्य है। अब इसके बाद जो है एक और मंगल पाठ है, उनका हम विचार करते हैं। सामवेदी उपनिषद का यह मंगल पाठ है। सामवेदी केनोपनिषद और छांदोग्य में भी ये पाया जाता है। सामवेद की तलवकार शाखा की केनोपनिषद है, वो भी मंत्र रूप है और उनका ही व्याख्यान है छांदोग्य उपनिषद। इसलिए अभी जैसे कहा कि मंत्र का व्याख्यान ही ब्राह्मण होता है, तो केनोपनिषद है वो मंत्र भाग की उपनिषद हुई और छांदोग्य है वो ब्राह्मण भाग की। देखो उच्चारण करते हैं,

0: लेकिन सर्वत्र ये जो तीन बार शांति शांति शांति का जो उच्चारण करते हैं उसका सर्वत्र अभिप्राय तीन प्रकार की शांति को लेकर के है। तीन ताप की निवृत्ति के लिए आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, ये तीनों ताप शांत हो। सभी वैदिक शांति पाठ में ये एक ही तात्पर्य से ये कहा गया है। तो देखिए ये जो है इसमें बहुत ही दिव्य भावना की गई है। उपनिषद का अध्ययन करते समय हमारे जो अंग है वो स्थिर हो जाए, बलवान हो जाए, पुष्ट हो जाए, इसलिए ये प्रार्थना की गई है। क्योंकि अध्ययन करते समय शरीर की स्थिरता भी आवश्यक है, कर्मेंद्रियों की ज्ञानेंद्रियों की स्थिरता भी आवश्यक है और प्राण की स्थिरता भी अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए यहां पर ये भावना की गई कि मेरे ये जो सब अंग है वो आप्यायन्तु, ब्रह्म का जो ध्यान है उनके अनुकूल मेरे सब अंग हो जाए। आप्यायन्तु किसके लिए कह रहे हैं? ममांगानि आप्यायन्तु, मुमुक्षु प्रार्थना कर रहे, इसलिए कहा मम अंगानि आप्यायन्तु। उपनिषद पाठ करते समय जो मुमुक्षु बैठे हैं वो आदि में ऐसी भावना करते हैं कि मेरे जो अंग है मम मुमुक्षु, मुमुक्षु के लिए प्रार्थना है, इसलिए मुमुक्षु कहते हैं कि ममांगानि आप्यायन्तु। अंगानि, अंगानि यानी जो कर चरण वगैरह है वो सब अंग है, वो आप्यायन्तु यानी कि वृद्धिं प्राप्नुवन्तु, वृद्धि को प्राप्त करे, वृद्धि को प्राप्त करे यानी कि उनकी स्वस्थता बनी रहे। कौन कौन है वो अंग उसको एक एक से बता रहे। देखो वाक, प्राण, चक्षुः, श्रोत्रम। तो वाक यहां पर केवल वाणी को ही ग्रहण किया है, किंतु इसके ऊपर जो भाष्य टीका लिखने वाले आचार्य कहते हैं कि वाणी से पांचों कर्मेंद्रिय ग्रहण कर लेनी है। कर्मेंद्रिया कितनी है?
1: पांच
0: है कि नहीं? अब केवल वाणी का ही नाम क्यों लिया, वाक का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि कर्मेंद्रियों में ये जो वाग इंद्रिय है वो प्रधान है, इसलिए प्रधान के ग्रहण करने से जो अप्रधान है उनका भी ग्रहण हो जाता है। इसलिए कहा जो वागिंद्री है वो कर्मेंद्रियाणाम उपलक्षणम, कर्मेंद्रियों का भी वो उपलक्षण है। अभिप्राय यह हुआ कि मेरी जो भी कर्मेंद्रिया है वो आप्यायन्तु, ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए, ये वेदाध्ययन के अनुकूल हो जाए। उपनिषद का जो प्रतिपाद्य ब्रह्म है उनको जानने में ये समर्थ हो जाए। समर्थ कब होगी? जब कर्मेंद्रिया इसमें लगेगी, इसी ओर लगे। अभिप्राय यह है कि मैं कर्मेंद्रियों के द्वारा इसे कार्य में लगू, यानी मेरे वाणी के द्वारा केवल ब्रह्म का ही उच्चारण हो, मेरे हाथ के द्वारा उनका ही ग्रहण हो, वाणी के द्वारा उनका वदन हो और हाथ के द्वारा केवल उनका ही ग्रहण हो। हाथ क्या करता है? हाथ का कर्म है, कार्य है ग्रहण करना, और वाणी का कार्य है वदन बोलना, और पैर का कार्य है चलना। तो मेरे पैर के द्वारा मैं उसी ओर चलूं, अंधकार से प्रकाश की ओर में चलूं। प्रकाश क्या है? वही परम, इसलिए कहेंगे ना तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, मृत्युर मां अमृतम गमय। यह अभिप्राय इसमें भरा हुआ, अंधकार से मैं प्रकाश की ओर चलूं, असत से मैं सत की ओर चलूं, और मृत्यु से मैं अमृत की ओर चलूं। मेरे पैर के द्वारा मैं चलूं तो मैं यही ब्रह्म की ही प्रदक्षिणा। चलने से क्या होता है? इस तरह की इस कोटि की भावना है तो ब्रह्म की ही प्रदक्षिणा होगी, इसलिए मेरी सब जो कर्मेंद्रिया है वो इसी में ही लगे, और भी जो गुप्त दो कर्मेंद्रिया है उनका भी यही अभिप्राय है कि मेरे द्वारा यदि संतति हो तो वो संतति भी इसीलिए कि मैं इस ब्रह्म की ओर अभिमुख हूं। हो कैसे? तो देखिए कि ब्रह्म की ओर अभिमुख होने के लिए जो पुत्र है ना, वो भी साधन है। उपनिषद में कहा पुत्रेण जय्यो अयम लोक, इस लोक के ऊपर यदि विजय प्राप्त करनी है तो पुत्र के द्वारा कर सकते हैं। पितृदि लोक है, उनके ऊपर यदि विजय प्राप्त करनी है तो कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, और देवलोक के ऊपर विजय प्राप्त करनी, विजय यानी उनका लाभ लेना, वहां जाना है तो उपासना करनी चाहिए। अब पुत्र से अभिप्राय है गृहस्थाश्रम, मेरा जो गृहस्थाश्रम है यानी गृहस्थाश्रम में जो मैं कर्म कर रहा हूं उनका एकमात्र उद्देश्य ये सांसारिक लाभ नहीं किंतु ब्रह्म लाभ हो। इसलिए हमारी ये जो संस्कृति बड़ी दिव्य है, जो भी हमारे यहां कर्म है उपासना है उन सब का तात्पर्य एकमात्र ब्रह्म है, इसलिए गृहस्थाश्रम कर्म प्रधान है। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं जो भी करूं वो ब्रह्म के लिए करूं, यानी मेरा जो गृहस्थाश्रम है वो तदनुकूल बने, मैं जो भी गृहस्थाश्रम में कर्म करता हूं वो उनके अनुकूल हो। इसलिए सबसे पहले कहा कि व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए, तब जाकर के वो इसी मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसलिए कर्मेंद्रिया जो है वो इस ओर अभिमुख हो, ये आवश्यक है। ठीक है, केवल कर्मेंद्रिया नहीं, और आगे कहा कि प्राण प्राण मम प्राण आप्यायन्तु, ऐसा वाक्य बनाइए, मेरा जो प्राण है वो भी आप्यायन्तु यानी ब्रह्म ध्यान के अनुकूल वो हो जाए, वृद्धि को प्राप्त होवे, यानी मैं उपनिषद का अध्ययन करने जब बैठू तो मेरा जो प्राण है वो सम रहे। और प्राण से अभिप्राय है अपान व्यान उदान और समान, प्राण शब्द पांचों प्राण वृत्ति का उपलक्षण है, जैसे वो वाक शब्द है कर्मेंद्रिय का उपलक्षण, वैसे ये प्राण है वो व्यान उदान अपान और समान उन चारों का उपलक्षण हो जाएगा। यानी मेरा जो प्राण है पंचवृत्तिक प्राण, प्राण अपान व्यान उदान और समान, जिससे ये मेरा शरीर धारण होता। देखो हमारा शरीर धारण करने में प्राण कारण है, प्राण न हो तो हमारा शरीर वो धारण ही नहीं हो पाएगा, उनकी स्थिति ही नहीं हो पाएगी। कभी सोचा हम जब भोजन करते हैं तो हाथ से उठा करके मुख में रखते हैं और फिर जमा कहां होता? पेट में। देखो मुख से लेकर यहां तक बीच में कितना फासला, दूरी है कि नहीं? तो अंदर हम हाथ से अंदर डालते हैं क्या? नहीं, हाथ से तो केवल मुख तक ही ले जा सकते हैं, मुख में रख सकते हैं, किंतु मुख से अंदर यहां पेट तक जाता है वो कौन ले जाता? वो अपान वायु ले जाता है, अपान वायु नीचे की ओर भोजन को ले जाता है। यदि वो प्रक्रिया जो है वो कुछ गड़बड़ आ जाए तो शरीर स्वस्थ रहेगा? नहीं रहेगा। पांचों प्राण की जो क्रिया है वो यदि बाधित हो जाए तो समझिए कि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या वेदांत विचार होगा? क्योंकि वेदांत विचार के लिए स्थिरता चाहिए, स्वस्थता चाहिए। यदि स्वस्थता नहीं है तो हम स्थिर चित्त से विचार नहीं कर पाएंगे, चित्त व्यग्र रहेगा। और कहा जो व्यग्र चित्त अवस्था में कोई भी कार्य किया जाता है तो वो सफल नहीं होता। यदि आप जप करने के लिए बैठे और चित्त व्यग्र है तो कहा व्यग्र चित्तो हतः जपः। व्यग्र चित्त अवस्था में किया गया जप है वो हत नष्ट हो जाता। नष्ट होने का अभिप्राय है उस समय हो ही नहीं पाएगा, वही उनका नाश है। नहीं तो आप कहेंगे अरे नाश हो जाएगा तो करेंगे तो फिर तो बेकार ही है। अरे नाश होने का अभिप्राय है कि व्यग्र चित्त अवस्था में आप ढंग से जप कर ही नहीं पाएंगे। ढंग से जप न करना यही क्या हुआ? वो जप का नाश हुआ। इसलिए जप करने के लिए भी चित्त क्या चाहिए? स्थिर चाहिए। और चित्त स्थिर, शरीर स्वस्थ हो तभी संभव है। देखो शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, और शरीर तब स्वस्थ होगा कि प्राणापान आदि जो समग्र क्रिया है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ चले। प्राण का अपना कार्य जो है निर्बाध गति से हो, अपान का कार्य वो निर्बाध गति से हो, उदान का कार्य व्यान और समान का जो कार्य है वो निर्बाध गति से हो। अभिप्राय है शरीर की स्वस्थता। शरीर स्वस्थ हो और फिर चक्षुरादि इंद्रिया भी स्वस्थ हो। और देखो इसलिए चक्षु से ज्ञान इंद्रिया ले लेनी है। चक्षु श्रोत्रम वो दोनों ग्रहण किया है। ये भी जो है अन्य तीन जो ज्ञानेन्द्रिया उनका उपलक्षण है। अब देखिए ज्ञानेन्द्रियों में चक्षु और श्रोत्र दोनों प्रधान है, इसलिए दोनों का नाम लिया। कर्मेन्द्रियों में वाक प्रधान है, इसलिए केवल वाक का नाम लिया। प्राण में जो मुख्य वृत्तिक प्राण है वो प्रधान है, इसलिए केवल प्राण का नाम लिया। किंतु ज्ञानेन्द्रियों में चक्षु और श्रोत्र दोनों बराबर के प्रधान है, इसलिए दोनों का नाम ले लिया। चक्षु श्रोत्रम वो इतर जो तीन ज्ञानेन्द्रिय उनका उपलक्षण है। उसके साथ भी लगाए आप्यायन्तु, ब्रह्म ध्यान के अनुकूल वो वृद्धि को प्राप्त हो, उसी की ओर लगे। और आगे भी सर्वाणि इंद्रियाणि कह करके प्राण पंचक को भी ग्रहण कर लेना है। तो इस तरह से जो पूरा सूक्ष्म शरीर यहां पर ग्रहण हो गया वो जो है सुचारू रूप से चलेगा, तभी वेदांत का स्वाध्याय का विचार हो पाएगा। स्वाध्याय में प्रवेश हो इसलिए शरीर की, प्राण की, इंद्रियों की, सारी इंद्रिय ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया की स्थिरता इसमें मांगी गई।
1: ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।

0: ശിവായ. You're listening to Shaivam.org Radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhanda Nandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Tat Sat. Tau Tattvam Na Janami Kirtu Shosi Maheshwara Yatru Shosi Mahadeva Tadrushaya Namo Namo. Yo Asau Soaham Yadam. Om Tat Sat Brahmane Namah. Jagratadi Trayon Muktam Jagratadi Mayam Tatha Aumkar Eksu Sanvetyam Jatpadam Tannamamyaham. Om Shah. Mandukya Upanishad mein ye baat bahut spasht roop se batlai gayi hai ke agar hum शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, जीवन में एक रास्ता चाहते हैं, तो फिर हमें अपना संबंध उसी से जोड़ना चाहिए जो स्वयं सुखी है, जिसमें दुख नहीं है, जो परिवर्तनशील नहीं। अगर हम अपना संबंध उनसे रखेंगे जो बदलने वाले हैं और सुख हम वो चाहें जो कभी ना बदले, एक जैसा रहे, तो ये संभव नहीं। इसलिए परिवर्तनशील का सम्मोहन छोड़कर, क्योंकि परिवर्तनशील में बहुत कशिश है। दुनिया की चीजों में, जिसको हम माया कहते हैं, ये कोई कम नहीं है। खुदा रखे गजब की दिलकशी दुनिया में है अक्सर, जो निकलेगा वो इस महफल से लेकर जान निकलेगा। जान दिए बिना यहां से कोई निकल नहीं पाया। ये भी ऐसी रंगीन महफल है कि जो निकलेगा इस महफल से देकर जान निकलेगा। उससे पहले कोई छूट गया हो तो वो तो कोई बुद्ध पुरुष ही है, वो तो ऋषि ही है। क्योंकि इस दुनिया की अपनी रंगीनी इतनी है कि आसानी से कोई निकल नहीं सकता। क्योंकि कोई निकल नहीं सकता, इसलिए कोई वास्तविक सुख को भी प्राप्त नहीं होता। रोते हुए आए थे, रोते हुए चले, यही हर एक की कहानी। इतनी सी कहानी है हर एक के जीवन की मुख्तसर से, कि रोते हुए आए थे हम, रोते हुए चले। कारण उसका यही रहा कि जो यथार्थ था, जो वास्तविकता थी, उसको हम नहीं पकड़ पाए। क्योंकि हम रहे इंद्रियों के स्तर पर और सुख है आत्मा के स्तर पर। इंद्रियों और आत्मा के बीच में एक फासला है। जो व्यक्ति उस फासले को तय नहीं कर पाता, वो सुख तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए जो इंद्रियों की तृप्ति में ही फंसा रह गया, पहले ही कदम पर जो रुका रह गया, वो कभी वास्तविक सुख को नहीं पहुंचा। इसीलिए हमने गीता के 3rd अध्याय का, के इंद्रियाणि मनोबुद्धिर जिसमें यह कहा गया था। और फिर भगवान ने उसमें ये भी बात कही कि आप इन इंद्रियों को अपने वश में कर नियमन करो इनका, और फिर आप मन को और फिर बुद्धि को वश में करते हुए, अनुरूप करते हुए, फिर जो बुद्धि से परे तत्व है उस तक पहुंच कर इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर। ऐसा उन्होंने ये एक क्रम बतलाया। इसमें जो भी थोड़ा बहुत साधना में लगे रहते हैं उनके लिए, जो एक ने ये प्रश्न भी किया कि ये कैसे संभव है, ऐसा पूछा चलते चलते। वैसे तो चलते चलते जो पूछते हैं तो पता होता है कि इन्होंने भी वैसे पूछा है, कुछ करना नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि शास्त्र में जो वर्णित है उसकी ओर इशारा कर देना हमारा काम है, कर्तव्य है, यही काम है और कुछ है नहीं। तो इंद्रियों को भी एकदम हम बस में करना मुश्किल होता है, इसलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 62 और 63 नंबर के जो श्लोक हैं वो जीवन की पूरी साधना की व्याख्या करते हैं। पूरे मन के मनोविज्ञान या जो क्यों हमारा पतन होता है उसकी पूरी व्याख्या उन्होंने की। 62 और 63वां श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, कई बार आप सबने सुना। 62वां श्लोक ये है कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् सम्रति विभ्रमः, सम्रति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये एक क्रम है कैसे हम नाश की ओर बढ़ते हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है, क्योंकि ये निश्चित है कि बच जाना ये आपके अपने हाथ में है अगर चाहें तो। उन्होंने कहा ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषय को देख लिया आपने कोई बात नहीं, किसी चीज को देखा उसकी कोई बात नहीं। ध्यायतो उसका ध्यान करना, उसका विचार करना, अर्थात हमने कोई चीज देखी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कई चीजें देखते हैं हम आते जाते। लेकिन अगर किसी चीज को हम अच्छी या बुरी कह देंगे, ध्यायत्व का मतलब होता है अच्छा कह देना या बुरा कह देना, हमने ध्यान किया उस वस्तु का, हमने विचार किया उस वस्तु का, क्योंकि ध्यान एक मानसिक क्रिया है और बौद्धिक निर्णय है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो देखा कोई बात नहीं, लेकिन जो ही आपने उसको अच्छा या बुरा कहा बस वहां से मुसीबत शुरू हो जाएगी। क्योंकि अच्छा कहने का मतलब हुआ कि आपके मन में वो थोड़ा स्थान बना रहा है, वो विषय, वो वस्तु, वो स्थान, जो कुछ भी आप, जिसको हमने सुंदर कह दिया। सुंदर कहते ही हमने अपनी मान्यता उसमें डाल दी। देखो शास्त्र ये कहते हैं, जो भी योग शास्त्रों का मनन करते हैं, सुनते रहते हैं, वो ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु ना सुंदर है ना असुंदर है। ये आपने जहां कह दिया उसमें आप इन्वॉल्व हो गए, आप उसमें शामिल हो गए। वस्तु अपने आप में ना कोई सुंदर ना कोई असुंदर, सुंदर और असुंदर ये कोई सार्वभौम मापदंड नहीं है, अर्थात पूरे संसार में जिसको आप सुंदर कहें उसे ही सब सुंदर कहते हो, ऐसा कुछ नहीं। या जिसे आप असुंदर कहते हो उसे सारे असुंदर कहें, ऐसा कुछ नहीं। सुंदर वैसे भी जिसको हम सुंदरता कहते हैं स्त्री या पुरुष की, इसके भी मापदंड एक जैसे नहीं है। अफ्रीका में सौंदर्य के मापदंड और हैं, चीन में और हैं, यूरोप में और हैं, भारत में और हैं। भारत में भी सुंदर किसको कहते हैं, पंजाबियों का सुंदरपुना कुछ और तरह का है, गुजरातियों का और तरह का है, केरल वालों का और तरह है। तो सबके सुंदर असुंदर के अपने अपने मापदंड। इसलिए ये शब्द मन में आते ही आप समझो कि आप एक कैटेगरी में हो गए। आप जो अभी तक निष्पक्ष वैसे ही जा रहे थे, कोई बात नहीं थी, सुंदर कहते ही आप एक ग्रुप में शामिल हो गए, एक धड़े में शामिल। किसी चीज को सुंदर कहते ही या अच्छा कहते ही आपने अपने आप को उसमें सम्मिलित कर लिया। आपकी इसको वासना कहते हैं सुषुप्त रूप से। ये बीज है, अगर देखो एक सिद्धांत है कि बीज आपके हाथ में हो उसे फेंक दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीज आपके हाथ में उसे आग में फेंक दो जल जाएगा, पत्थर मार दो उस पर वैसे खत्म हो जाएगा, पानी में फेंक दो कोई बात नहीं। यही बीज अगर पौधा बन गया छोटा और फिर वृक्ष बन गया, तो वृक्ष बनने के बाद फिर ये जाएगा। बीज जब वृक्ष बन जाता है तो वृक्ष को काटते हैं, उखाड़ते हैं। और ये भी देखा गया जिनका अनुभव है वृक्षों का, कि वृक्ष को आप काट दो तो उसमें पहले तो एक ही शाख थी, काटने पर चार पांच शाखाएं उगती, खत्म नहीं हुआ। ये ठीक है कि वो वैसा नहीं था, लेकिन नई नई को उमले थोड़ा थोड़ी आसक्ति फिर उस चीज में चलती रहे। पेड़ कट भी गया, बात खत्म भी हो गई, लेकिन फिर भी उसमें आसक्ति। जाने वाले कभी के चले भी गए, फिर भी रो रो के उनको पुकारा गया, आसक्ति जाती नहीं है उसमें। कट गया, खत्म हो गया, कुछ भी करो, लेकिन फिर नई नई कोंपने उसमें जम गई। उखाड़ने पर भी वो और भी कईयों को साथ में उखाड़ता है, लेकिन फिर भी उसका कुछ ना कुछ अंश रह ही जाता है, और तब तक ये जीवन ही पूरा हो जाता। तो बीज कहाँ है बुराई का, ढाय को, किसी भी चीज को अच्छा या बुरा कहते। संकल्प में भी अगर ये बात आ गई, क्योंकि इसीलिए तो उन्होंने कहा ना कि राग और द्वेष से ऊपर उठो, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, कोई अपना नहीं कोई बेगाना नहीं। बार बार हमारे शास्त्र इसी बात को दोहराते कि इन सब से ऊपर उठो, आप आत्मा की तरफ ध्यान दो, क्योंकि आत्मा के लिए कोई अच्छा और बुरा नहीं। अगर कोई सुंदर है भी सचमुच में दुनिया में, तो आत्मा से बढ़ के कोई सुंदर नहीं। ये आत्मा के सौंदर्य से ही बाकी सब चीजें सुंदर प्रतीत हो रही। अगर बीच में से आत्मा निकल जाए तो जिसको हम बहुत सुंदर कहते हैं उसको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तो जो सचमुच में सुंदर है, जो सुंदरता का कारण है, आप सुंदरता के कार्य को देख रहे, लेकिन सुंदरता के कारण को देखोगे तो बच जाओ। और अगर सुंदरता के कार्य को देखोगे, इफेक्ट को देखोगे जो सामने नजर आ रहा है, तो फिर हम रास्ता भूल गए, फिर हम नीचे पतन की ओर चल पड़े। तो यहां पर पहला कदम जो है वो ध्याय तो विषयान पुंसा, विषयों का ध्यान, ध्यान का मतलब है उनको अच्छा या बुरा कहना। व्यवहार में भी देखो, ये साधना की बात अलग है, व्यवहार में भी आप चीजों को अच्छा बुरा कहते हो। जो अच्छी है उनको लेने की इच्छा होती है। व्यापारी है, वो सोचता है ये माल अच्छा है, ये लूंगा तो मुझे इसका लाभ है, मुझे उसको, उसी उस निर्णय के इर्द गिर्द ही बाकी सारी भविष्य की योजना जुड़ जाती। ये सोचते ही कि ये अच्छा है ये बुरा है, बाकी आगे का सारा टाइम टेबल, सारा कार्यक्रम निर्धारित हो जाता है। लेकिन साधक के लिए सावधानी इतनी ही है कि विषयों के प्रति, देखो व्यवहार चलाने के लिए तो आपको होशमंद रहना ही पड़ेगा। आप अगर किसी व्यापार में है, किसी और काम में है, तो वहां तो आपको आंखें खोल के खरा और खोटा देखना ही पड़ेगा। लेकिन साधना के क्षेत्र में चलते हुए विषयों की बात है, ये रूप रस गंध स्पर्श, ये यहाँ पर वो व्यवहारिक बात नहीं है। यहाँ तो ये बात है कि इनमें ध्यायतो विषयान अंशः, उसका ध्यान करते ही अर्थात विचार करते ही, उसको अच्छे या बुरे का नाम देते कि ये अच्छा है, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये नाम देते ही हम संगस्तेषु उपजायते, मानसिक रूप से उसके साथ हो गए, उसका संग करने लिए। जिस चीज को हमने अच्छा कह दिया, इसका अर्थ है कि मेरा मन उसके साथ या मेरा मन उसको चाहता है। छोटी सी चाहना या कामना का बीज इसमें छुपा हुआ है, किसी को अच्छा कह देने मात्र में भी। इसीलिए ना किसी को अच्छा ना किसी को बुरा। कबीर इसीलिए कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से वैर, ना किसी से मित्रता ना किसी से वैर। दोनों से ही बचना, मित्रता से भी और वैर से, अर्थात राग से भी और द्वेष से। क्योंकि राग और द्वेष के पैदा होते ही हम उसका संग, संग का मतलब हो गया मानसिक दृष्टि से उसके साथ हो गए। और जिस चीज के हम साथ होते हैं मानसिक दृष्टि से, धीरे धीरे उसी का चिंतन करते करते फिर हम उसको साकार रूप में भी, सचमुच में भी उसके साथ हो जाते। इस सारे में ही मनोविज्ञान ये कहता है कि बहुत ही झंझट है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात, हाँ, संजायते कामा, और कामात क्रोध हो भी जाए। संग से जो ही उसकी हमने चाहना की, चाहना का कामना में बदल जाना। काम कहते हैं आग्रह पूर्वक किसी वस्तु को चाहना, मन से भी बुद्धि से भी और जिद से भी कि ये चीज मुझे मिल जाए। जब संग उसका हो जाता है तो फिर मन में आता है कि ये मेरे ही हो जाए। जो भी ये काम पैदा हुआ तो काम से क्रोध जरूर पैदा होगा, ये उन्होंने नियम बना दिया। काम से क्यों क्रोध पैदा होगा? काम से क्रोध इसलिए पैदा होगा, पहली बात तो ये है कि जिस चीज को भी आप चाह रहे हैं उसको चाहने वाले आप अकेले ही नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग उसी को चाह रहे हैं। तो जिस चीज को, चीज तो कोई एक हो, चाहने वाले अनेक हो, तो तनाव तो पैदा होगा। मानसिक तनाव जो होता है, देखो कभी आपको कोई शत्रु सामने नहीं आएगा, कोई वस्तु है, कोई चीज आपने देखी और आप सोचते हो ये बहुत बढ़िया है, आपने उसकी कीमत भी तय कर ली, लेकिन उसमें पैसे हैं नहीं, आप कहते हो मैं सुबह आके ले जाऊंगा, लेकिन रात भर हालांकि आपका विरोधी कोई नहीं है, रात भर आपको ये कोई और ना ले जाए, चैन नहीं होगा। कोई और ना ले जाए का ये मनोविज्ञानिक बेचैनी क्यों है मेरे मन में, क्योंकि और भी बहुत हैं जो उसी को चाह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और भी बहुत से उसी को चाहने वाले हैं। सामने ना भी आए प्रैक्टिकली वो, तब भी तनाव पैदा होगा, और उस चीज को लेने में रास्ते में बहुत सी अड़चने, कोई एक आध अड़चन नहीं है, हर एक वस्तु की अलग अलग तरह की चीजें हैं। फर्ज करो कोई ऐसी चीज है जो बाहर से आई हुई है, यहां बेचनी इलीगल है और आपने खरीदनी है, तो उसके लिए तो 100 तरह के झगड़े हैं रास्ते, जिसको जो आपको तंग करेंगे कि कोई वो ना देख ले, पुलिस वाले ना देख ले, कोई पड़ोस वाला ना उसकी शिकायत कर दे, उसको लाते हुए ना मुझे कोई पकड़ ले, 100 बातें। तनाव वहीं से शुरू हो जाएगा जब काम, और काम में जिस समय व्यक्ति होता है, तनाव में जिस समय व्यक्ति होता है, जरा सा भी जो उसमें विरोध पैदा हो या विरोध की आशंका भी हो कि ये विरोध करेगा तो क्रोध होगा। इसलिए ये संभव नहीं कि उसमें से क्रोध ना। एक तो ये बात, मुख्य बात यही है कि उस चीज को चाहने वाले बहुत, आप भी चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं, और जहां पर ये मानसिक संबंधों की बात है, यहां पर तो चाहने के बीच में 100 तरह की परेशानियां, जातियों के बंधन हैं, प्रांतों के बंधन हैं, संस्कृतियों के बंधन हैं, और लेन देन के बंधन है कि इतना पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दुनिया भर की बातें होती रहती। तो ये सारे तनाव जो व्यवहारिक दृष्टि से नजर नहीं आते, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में, क्योंकि ये पूरे एथर में, एथर का मतलब है जिसे आप खाली जगह कह रहे हो, जिसे आप ये व्योम कह रहे हो, व्योम में इस तरह का चिंतन भरा पड़ा है, और जिस तरह का चिंतन आपके मन में आता है, उसी तरह का चिंतन आपके इर्द गिर्द के वातावरण से उसको पुष्ट करता है, तो वो और बढ़ता है। इसीलिए जहां सात्विक चिंतन आपके मन में आया, और कहीं आप किसी अच्छी जगह पर, जो तीर्थ स्थान है, जो किसी समय जहां बहुत तपस्या हुई हो, वहां पहुंचो, तो वहां उस तरह के चिंतन का अधिक प्रभाव होता है, तो वो आपको और आगे बढ़ा देगा। लेकिन आम जगहों पर, जैसे ये मार्केट प्लेसेस हैं, बाजार हैं, मंडियां हैं, यहां दिन रात चिंतन राजसिक होता है, इसलिए जरा सा आपके मन में राजसिक चिंतन हुआ तो वो बाकी का बाहर का चिंतन वो आपके उस छोटे से चिंतन को 100 गुना कर देता है। इसीलिए कई बार ऐसा भी देखते हैं कि छोटी छोटी बात पर मर्डर हो गया, चाय के कप पर, चाय का एक कप पिया और उसी पर झगड़ा हुआ, चाकू मार दिया उसने उसको, वो चला गया, वो खत्म। तो ये जो आपस में अच्छे मित्र भी थे, और करते करते एक सेकंड में ऐसा हो, तो उसका सीधा सा कारण यही होता है कि वातावरण में वो जो दुष्चिंतन है वो आपके दुष्चिंतन को पुष्ट करता है, और वातावरण में जो शुभ चिंतन है वो आपके शुभ चिंतन को भी पुष्ट करता है। तो इसलिए काम से क्रोध, काम का अर्थ यही हुआ कि चाहने जिसको आप चाह रहे हो उसको और भी चाह रहे, और करते कराते फिर उसमें से क्रोध तो पैदा होगा। ये बड़ी विचित्र बात है। देखो, फर्ज करो और कोई चाहने वाला नहीं है, आप ही अकेले हो, और आपको वो मिल भी जाए, और चाहने वाले विरोध ना करें, समाज ने व्यवस्था की कि लड़ाई झगड़े ना हो, तो जैसे विवाह होते हैं, शादियां होती हैं, उनमें कोई तीसरा नहीं होता, दो को मिला देते हैं कि बस आप ठीक हो। लेकिन दो भी जब मिल जाते हैं और कोई तीसरा है नहीं, कोई रास्ते में झगड़ा भी नहीं था, बड़े आराम से मिले हैं, बड़े बैंड बाजे बजाते हुए मिले, और बड़ी खुशियों से सब फीसते हों के बधाइयां मिली, अब उन दोनों का भी जहां जहां दो हैं सबको पता ही, कोई कहने की बात नहीं कि वहां क्रोध क्यों। वहां क्रोध इसलिए कि संसार में सिर्फ दो मशीनें तो एक जैसी हों तो चुपचाप रह सकती, दो चेतन तत्व, दो व्यक्ति समानांतर नहीं रह सकते। ये निर्णय है शास्त्रों का। आपने भागवत की कथा कई बार सुनी और भागवत की कथा में दत्तात्रेय के गुरुओं की बात सुनते हैं 24, और उन 24 गुरुओं में अंत में एक धान कूटने वाली लड़की का वर्णन है जिसने चूड़ियां पहन रखी थी कि वो खटकती हैं, जब दो रह गई तो वो भी आपस में खटक गई, फिर भी उसने एक उतार दी तो तब वो हुआ। तो दत्तात्रेय कहते हैं तब से मुझे ज्ञान हुआ कि अकेले ही विचरण करना चाहिए, दो भी होंगे तो खन खन होगी ही कहीं ना कहीं। तो इसलिए दो शास्त्र, उसी को आप अगर उपनिषद की भाषा में कहोगे तो उपनिषद के ऋषि ने डिक्लेयर कर दिया कि द्वैतम एव भयम भवती, द्वैत में ही भय है, द्वैत में ही झगड़े हैं, द्वैत में ही सारी मुसीबत। पुराणों ने उन लंबी कहानियों को सुना सुना के बना के बतलाया हमें, और ऋषियों ने एकदम कह दिया कि द्वैत जब तक रहेगा छुटकारा है नहीं। तो इसलिए जहां दो भी रह जाते हैं, क्योंकि दोनों का कोई सुबह कोई 4 बजे उठने वाला है, किसी ने 5 बजे उठना है, खाने पीने में अपने अपने वो हैं, पहनने में वो हैं, तैयार होने, हर एक का अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी बात। तो कितना भी एडजस्ट करके चलो, कितना भी एक दूसरे का सम्मान करो, फिर भी हफ्ते 10 दिन बाद कहीं ना कहीं झगड़ा शुरू होता ही। तो क्रोध आएगा है, क्योंकि क्रोध इसी काम के लिए आता है कि जो हम चाह रहे हैं उसमें किसी ने कुछ विघ्न डाल दिया, देर कर दी, वो हो गया, तो उसमें झगड़ा हो गया, उसमें क्रोध आ गया। तो क्रोध आने से फिर सारा हमारा जितना कुछ है यहां से और ज्यादा गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है। जब ढलान पर होती है ना कोई गाड़ी पर्वत से, तो ये समझ लो कि यहां क्रोध से और तेजी से फिर आप पतन की ओर वो चलने लगती है। यहां तक तो अगर शुरू में ध्याय थी उस बीज को भी पकड़ के खत्म कर देते तो बात खत्म। आगे विचार करते हुए संग से भी अगर हम लौट जाते या संगता में आ जाते तो ठीक, लेकिन उससे जब संजायते कामा काम में ही पहुंच गए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो गया। उससे अब क्रोध पैदा होगा ही, कितना भी आप जोर लगा लें।
1: Om Namah Shivaya. Dear users of Shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya.

0: प्रकरोति सुप्तपुरुषं नारायणं वा शिवम्।
1: कृच्छ्रैः कोटिशतैस्वपापनिधनं यच्चाश्वमेधैः फलं तत्सर्वं मणिकर्णिकास्नपनजे पुण्ये प्रविष्टं भवेत्। स्नात्वा स्तोत्रमिदं नरः पठति चेत् संसारपाथो निधिं तीर्त्वा पल्वलवत्प्रयाति सदनं तेजोमयं ब्रह्मणः।
0: इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्याणां श्रीमच्छङ्करभगवतां कृतौ मणिकर्णिकाष्टकं सम्पूर्णम्।
2: ॐ नमः शिवाय। You're listening to shaivam.org radios 24/7 spiritual channels from shaivam.org. ॐ नमः शिवाय।
3: डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द फॉलोइंग इज शुक्ल यजुर्वेदम मात्यांदीन शाखा अध्याय 8।
4: श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम। उपायामगृहीतोऽस्या द्वितीयेभ्यस्त्वा

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Maha Mandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: To usko phir sringar karti hai. बहुत सुंदर श्रृंगार करती है। रुद्राक्षर वसिते न देव वपुषो भस्मी लगा देगी। आप लोग नाइसिल पाउडर लगा देते हो ना, भक्ति जननी को नाइसिल पाउडर तो मिलेगा ही नहीं है। भक्ति जननी के पास क्या मिलेगा? चिताभस्म मिलेगा भाई है? भसितम भस्मा चिताभस्मा लेपो सृगभ निर्करोटी परिकरा रुद्राक्ष ही ले उस भक्त रूपी अर्भक को भक्ति रूपी जननी रुद्राक्ष पहना देती है। रुद्राक्ष का अर्थ हो गया कि तुम दृष्टि से देखो, जिसको भी देखो उसी में रुद्र बुद्धि करो, शिव बुद्धि करो, रुद्राक्ष का अर्थ है। भक्ति रूपी जननी भक्त रूपी बालक को रुद्र का नेत्र देती है, रुद्राक्ष लगा देती है, का मतलब हुआ कि तुम्हारे ये दृष्टि पैदा कर देती है कि तुम जो भी देखो वहीं परम शिव का अनुभव करो, दृष्टि में शिव भाव आ पाए आ जाए। रुद्राक्षेर भसिते न देव बपुषो रक्षाम भवत भावना पर्यंके। कोई नजर ना लगाए इसलिए मां उसके गाल में काला लगा देती है, लेकिन भक्ति जननी सफेद लगा देती है। क्या ललाट में भस्म लगा दी, दुनिया का क्या नजर लगेगा है? बोलो, शिवजी का नजर गले में पड़ा हुआ होगा तो दुनिया का नजर क्या लगेगा? हम अपने बच्चों को रुद्राक्ष तो लगा नहीं सकते, कहीं रुद्राक्ष पहना देंगे तो इसके प्रभाव से कल जोगी बनकर ना भाग जाए, तो बच्चों को रुद्राक्ष नहीं पहनाना चाहिए है? हम डरते हैं बच्चों को रुद्राक्ष पहना देने में। भगवान शिव की दृष्टि जहां रहेगी कि संसारियों की दृष्टि पड़ेगी उसमें और लगेगा नजर उसको, और भस्मी लगा दो क्या कहना। त्रिपुंड भस्मी लगा दो, भक्त को रुद्राक्ष और भस्म लगाना चाहिए वो शिव भक्त को। शास्त्र में तमाम भरा पड़ा है रुद्राक्ष और भस्मी की महिमा। भगवत भावना पर्यंके, उस भक्ति रूपी जननी भक्त रूपी बच्चे के हृदय में भगवान के भावना रूपी पर्यंक झूले में सुलाकर और शिव के दिव्य चरित्र रूपी गान करती है, लोहरी गाती है। भगवत भावना पर्यंके निवेश्य, पर्यंक माने झूला, कौन से झूला? भगवत भावना रूपी झूले में भक्त रूपी अर्भक को भक्ति रूपी जननी दूध पिलाकर नला धुलाकर नया कपड़ा पहनाकर रुद्राक्ष और भस्मी लगाकर एकदम सजा के उसमें सुला देती है और दिव्य भगवत चरित्र का श्रवण कराती है, और बच्चा सोता नहीं जागता है। कहां? पर्यंक में। कौन से पर्यंक में? भगवत भावना रूपी पर्यंक में वो जागता है। भस्मी की महिमा तमाम शिव गीता है, अनेक स्तोत्रों में पुराणों में महिमा भरा पड़ा है भाई। नर्य भस्म समादाय विशुद्धम श्रोतियालयम अग्निरित्यादिवीर मंत्रेर अभिमंत्र यथा विधि उद्वलयति गात्राणि तेन चर्चति चार्चति मामपि तस्मात् परतरा भक्तिर मम रामन न विद्यते। भगवान शिव राम को समझा रहे हैं, हे राम, कोई व्यक्ति हाथ में भस्मी लेवे और उस भस्मी को वैदिक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करे। भस्म को अभिमंत्रित करने का मंत्र है अग्निरिति भस्म, जलमिति भस्म, थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, वायुरिति भस्म, थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वगुं हवा इदं भस्म, मन एतानि चक्षुगुंसी भस्मानि। ये वैदिक मंत्र है, इस मंत्र से इस भस्मी को अभिमंत्रित करो। फिर उसके बाद त्रयायुखम जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुखम यद्देवेखु त्रयायुखम तन्नो अस्तु त्रयायुखम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। त्रयायुखम इति ललाटे कश्यपस्य इति जानुनी। हा, भस्मी धारण करने की ये विधि है। आपको वैदिक मंत्र नहीं आता हो चिंता नहीं करना, हाथ में भस्मी लो और पानी मिलाओ, पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करो और उसी पंचाक्षी मंत्री से तिलक धारण करो, भस्मी धारण करो। रुद्राक्ष और भस्मी सभी धारण कर सकते हैं, शास्त्र में ये बताया गया है, सभी को धारण करने का अधिकार है। सर्वदा शिरसा कंठे रुद्राक्षान धारयतु यः पंचाक्षरी जप परः समय भक्त समय प्रिय। राम गीता में नहीं, शिव गीता में भगवान शिव कहते हैं राम को, सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ललाट में, कंठ में, सिरसा सिर पे धारण करो और पंचाक्षरी का जप करो। कौन कौन धारण करे? ब्राह्मण ही क्षत्रियर्वैश्य ही शूद्रैरपि च शंकर ही। ब्राह्मण भी भस्मी और रुद्राक्ष धारण करे, क्षत्रिय लोग भी भस्मी और रुद्राक्ष धारण करे, वैश्य भी, शूद्र भी और वर्ण शंकर भी, अंत्यज भी, सभी को भस्म धारण करने का, रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। इतना जरूर है कि द्विजातीय जितने हैं वे लोग श्रोत्र भस्मी धारण करें, यानी उन मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके भस्मी धारण करें, और द्विज इतर जो हैं वह लोग सामान्य भस्मी को सीधे पंचाक्षरी मंत्र से अभिमंत्रित करके धारण करे। श्रोत्रम भस्म तथा स्मार्तम द्विजानाम एव कीर्तनम अन्येषाम अपि सर्वेषाम अपरम भस्म लौकिकम धारणम मंत्रतः प्रोक्तम द्विजानाम मुनिपुंगवैः కేవలం ధారణం విప్ర అన్నేషామపి కీర్తితం. ఈసారి భస్మధారణ రుద్రాక్ష ధారణకి మహిమ. భక్తి భీ శివ భక్తి భీ, यदि भक्त रुद्राक्ष और भस्म धारण करते हुए शिव आराधना में लगता है तो भक्ति बड़ा प्रसन्न होती है. इस तरह शंकराचार्य जी ने अपने आप को एक बालक के रूप में प्रस्तुत करके शिव भक्ति को जननी के रूप में प्रस्तुत किया. और भक्ति जननी किस तरह भक्त बालक की रक्षा करती है, किस तरह श्रृंगार करती है, किस तरह स्नान कराती है, किस तरह पान कराती है, किस तरह भूख निवृत्ति कराती है, ये सब इन श्लोकों के द्वारा भाव व्यक्त किया. इसलिए आप पूरी तरह भगवान शिव के भक्त रूपी बालक बन जाओ. संभालने का काम भक्ति रूपी जननी का है, उसके जिम्मा लगा दो, सब कुछ वो संभाल लेगी, फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. अब ऐसे शिव भक्तों का एक आधा उदाहरण दे रहे हैं. इस श्लोक के द्वारा, 63वें श्लोक के द्वारा एक ऐसे भक्त का उदाहरण दिया है शंकराचार्य जी ने. दक्षिण भारत का भक्त है ये. जिसको दक्षिण कैलाश बोलते हैं, श्रीकालहस्तेश्वर महादेव, वहां का ये घटना है. आप लोग तो मूल कैलाश तो जाते हो ना, उत्तर कैलाश. श्रीकालहस्तेश्वर को दक्षिण कैलाश बोलते हैं. श्रीकालहस्तेश्वर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में है, इसलिए दक्षिण कैलाश आप लोगों को पता है. तिरुपति बालाजी जाते हो ना, तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी से 40 किलोमीटर दक्षिण की तरफ पड़ता है. तिरुपति बालाजी से सीधा यदि मद्रास जाओ, चेन्नई जाओ, तो उसी रोड पर एक पहाड़ है, वहां वो मंदिर है. उस मंदिर का नाम है श्रीकालहस्तेश्वर महादेव. श्रीकालहस्तेश्वर उसको दक्षिण कैलाश कहते हैं. वो नदी के किनारे में वो मंदिर है, पहाड़ के नीचे सुवर्णमुखी नदी है, नदी का नाम है सुवर्णमुखी. वहां एक शिव का परम भक्त हुआ है. उसके शिव भक्तों के इतिहास में उसका नाम बड़ा विलक्षण है, भील जाति का है, जंगल में रहने वाला भील जाति का. उस भक्त की चरित्र को शंकराचार्य जी ने यहां स्मरण किया है. कैसे भगवान की शिव के आराधना किया उसने. मार्गावर्तित पादुका पशुपते रंगस्य कुरुचायते गंडूसाम्बुनिसेचनम पुररिपोर दिव्याभिषेकायते किंचित भक्षित मांसशेष कवलम नव्योपहारायते भक्ति किम न करोत्यो वनचरो भक्तावतन सायते. अहो आश्चर्य की बात है, भक्ति क्या नहीं करती है. भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति कुछ भी कर सकती है. और भक्ति से प्रेरित होकर व्यक्ति यदि भगवान में लगता है तो सर्व दोष भी निर्दोष हो जाता है. भक्तिभाव की यह विशेषता है. कहते हैं कि मार्गावर्तित पादुका पशुपते अंगस्य कुर्चायते। वहां एक नियम उसके इतिहास में लिखा है, पहले मंदिर नहीं था कहते, सुवर्णमुखी नदी के किनारे शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, एक हाथी रोज आकर सुवर्ण नदी के से मुख से पानी भरता था और ले जाके शिवजी को चढ़ाता था, वही उसकी रुद्राभिषेक थी नित्य निरंतर। पूर्व जन्म का कोई शिव भक्त रहा होगा, किसी प्रारब्ध के चलते उसको हाथी का शरीर में फिर जन्म लेना पड़ा, किसी प्रतिबंधक के चलते, जैसे आप लोग शिव पुराण में भागवत में सुनते हो ना, गज की बात, हाथी की बात, गजेंद्र की बात। पूर्व जन्म में कोई विष्णु का परम भक्त था, लेकिन किसी श्रापवश उसको हाथी बनना पड़ा, और जब वो विपत्ति में पड़ा तो उस समय कोई उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर नहीं हुए, तो पूर्व जन्म का वो संस्कार जग गया और उसने उस सूंड से कमल तोड़कर भगवान विष्णु को कहा कि भगवान मैं इस संकट में पड़ा हुआ हूं, आपकी आराधना और कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे मन की भावना है कि यही आपके लिए पूजा होवे, इतना करना था कि भगवान विष्णु की बड़ी कृपा हुई और उनकी रक्षा हो गई। इसी तरह के कोई वो हाथी था भगवान शिव का परम भक्त, जो ये संस्कार था शिवार्चना, वो प्रतिदिन सुवर्णमुखी नदी में जाता था, पानी सूंड से खींचता था, पहले अपने शरीर में डालता था, स्नान कर लिया तब उसके बाद फिर सूंड में पानी भरता था और चल के जाकर शिवलिंग के ऊपर वो सूंड से पानी छोड़ता था, भावना करता था कि मैं शिवजी का रुद्राभिषेक कर रहा हूं। वाह, कहते हैं कि उसी समय एक करुड़ी मकड़ी, हिंदी में मकड़ी बोलते हैं, आप गुजराती लोग क्या बोलते हो, गर करोड़ियो बोलते हो, उर्ण नाभि संस्कृत में उर्ण नाभि बोलते हैं, है? मकड़ी बोलते हैं, है? वह भी पूर्व जन्म का कोई शिव भक्त था, उसको लगा कि ये भगवान शिव खुले में है, उनको दिन में धूप लगता है, कितना तड़पते होंगे भगवान शिव। वह सुबह जाता था और अपने शरीर में से वो रेशा को धागे को निकालकर बढ़िया जाला चंदुआ बना के, ताकि भगवान को धूप न लगे गर्मी न लगे, और हाथी जाता था दूसरे दिन तो फिर वो सब पानी डाल देता था वो सब गायब, मकड़ी फिर वो चंदुआ बनाता था रोज, दोनों की कंपटीशन चलती थी। कहते वहीं एक आदिवासी रहता था, उसको कहां से शिव पूजा का धुन चढ़ गया, भक्ति चढ़ गई, उसने कहा कि ये जानवर तो भगवान शिव की रक्षा माने आराधना में लगे हैं, हाथी और मकड़ी ही, हाथी जानवर जीव है पशु है और मकड़ी तो कीड़ा है, वो भगवान की इस तरह सेवा कर रहे हो, मैं तो इंसान हूं, मुझे तो और करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास पूजा करने के और साधन तो है ही नहीं, मैं क्या करूं, क्योंकि आदिवासी भील था इसलिए उसके पास धनुष बाण था और तो कुछ था नहीं, तो रोज वो शिकार खेलता था, पशुओं को मारता था, तो पशुओं को मारने से पहले, मारने के बाद स्वयं खाने से पहले उस पशु का नरम सा भाग मांस का टुकड़ा हाथ में लेता था, देख लो किसलिए लेता था, नव्योपहारायते, भगवान शिव को नैवेद्य भोग लगाना है ना, इसलिए। अब रुद्राभिषेक कैसे करे, पूजा कैसे करे, गंडो सांबु निसेचनम पुररिपो पूरा रिपु माने त्रिपुरासुर के मारने वाले भगवान शिव पूरा रिपु त्रिपुरासुर के दुश्मन पूरा रिपु। दिव्याभिषेकायते एक हाथ में तो धनुष्बाण है, एक हाथ में वो नैवेद्य है मांस है, फिर पानी किस में लेके जाएगा, कैसे ले जाएगा। उसने हाथी को पानी ले जाते हुए देखा था, वो सीख लिया। हाथी जब अपने मुख से जूठा पानी चढ़ा सकता है तो मैं क्यों नहीं चढ़ा सकता हूं। नदी में गया और उसने मुख में पानी भर लिया है? गंडू सांबू, गंडू माने मुख, अंबु माने जल। वो करता था मुख में पानी भर कर ले आता था है? और भगवान शिवलिंग पर श्रीकाला हस्तेश्वर शिवलिंग पर मुख का पानी चढ़ाता था। और हाथी के पूजा करने पर दिन दिन रोज रोज पानी डालने पर उस शिवलिंग में काई जम गया था। उसको लगा अरे भगवान के तो हिरक देखो ऐसा गंदा हो गया, ये हाथी रोज इतना पानी चढ़ाता है, सफाई करता नहीं है, है? अब उसने पूजा करने से पहले क्या किया, अपने पांव में जो जूता पहन रखी थी चमड़ी का, उसी से शिवलिंग में जमी हुई काई को वो खुरचने लगा, उसको घिस घिस कर उसको हटाने लगा। कौन वो आदिवास वनचरा आदिवासी हाँ। मार्गावर्तित पादुका पशुपते अंगस्य कूर्चायते, शिवलिंग में जो जमी हुई काई थी वो पांव से जूते से पांव के जूतों से वो घसता था, क्योंकि एक हाथ में तो नैवेद्य रखा है, एक हाथ में धनुष पकड़ा है और मुख में पानी रखा है, फिर क्या करे। तो उसका पांव खाली था, पांव से रगड़ने लगा, जोर जोर से रगड़ रगड़ के उसमें जमे हुए काई को वो हटाता था। मार्गावर्तित पादुका पशुपते अंगस्य कुर्चायते, अब सब कुर्चन करने के बाद हैं? क्या करता था तो मुख का जो पानी है वो शिवलिंग के ऊपर गंडो सांबुनिसे चनम पुररिपोर दिव्याभिषेकायते, भगवान शिव के लिए वही दिव्य अभिषेक हो गया भाई। किंचित भक्षित मांस लेश कवलम, मीठा है कि नहीं, नरम है कि नहीं, पहले जानने के लिए वो पहले खा लेता था कच्चा ही, वो तो कच्चा ही खाता था, जंगली था वो, उसमें से जो स्वादिष्ट था नरम भाग था वो कहते ये ठीक है शिव जी के लिए भोग लगाना। सवरी ने भी बैर खाती रही ना, कड़वा है कि मीठा है कि कैसा है, खाने के बाद उसको अच्छा लगा तो ये ठीक है मेरे राम के लिए, ये बैर ठीक है। जो स्वादिष्ट था वो अलग रखती थी, जो कड़वा होता था फेंक देती थी। उसी तरह ये शिव भक्त कन्नप्पा, उसका नाम था कन्नप्पा, दक्षिण भारतीयों का नाम ऐसे तो होता है ना, कन्नप्पा शिव भक्तों का उसका नाम था। किंचित भक्षितम, थोड़ा सा खाकर स्वाद चखने के बाद बढ़िया जो मांस का खंड था, किंचित भक्षित मांस शेष कवलम, वो टुकड़े को नव्योपहारायते, भगवान शिव के सामने रख देता था। हे भगवान मैं मंत्र तो जाता नहीं जानता नहीं हूं, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पंच प्राणेभ्य स्वाहा मध्य पानीयम उत्तर पोषणम मुख प्रक्षालनम हस्त प्रक्षालनम जलम समर्पयामि, ये सब तो जानता नहीं था। ये खाओ महाराज, ले जी यही खाओ, मैं ये खाता हूं आप भी यही खाओ, आप लोग भी तो यही करते हो ना, घर घर में शालिग्राम रखे हो, द्वारिकाधीश की प्रतिमा रखे हो, लड्डू गोपाल की प्रतिमा, कृष्ण राधा कृष्ण की प्रतिमा रखे हो, छोटा सा शिवलिंग नर्मदेश्वर रखा होगा है? अब एकादशी के दिन आप भात नहीं खाओगे, दाल नहीं खाओगे, भगवान को क्या भोग लगाते हो? मैं भले एकादशी करूं, भगवान को तो दाल भात पका के खिलाना चाहिए, करते हो है? खिलाते हो दाल भात पकाकर? भगवान एकादशी नहीं करते हैं तो वो तो दाल भात खाने वाले हैं, इसलिए उनके लिए दाल भात पका देता हूं, मैं तो एकादशी करूंगा, ऐसा करते हो? तुम एकादशी कर रहे हो तो वही एकादशी के फलार भगवान को भोग लगाते हो, लगाते हो कि नहीं बोलो? और द्वादशी के दिन तुम दाल भात खाते हो तो वही दाल भात का ही भोग लगाते हो। तुम जो खाने के लिए पकाते हो वही भगवान को भोग लगाते हो कि भगवान से पूछकर अपने खाने के लिए पकाते हो? बोलो। वो आदिवासी भील जो खाता था वही ना भोग लगाएगा, और क्या है? वही भोग लगाएगा। किंचित भक्षित मांसलेश कवलम नव्योपहारायते भक्ति किम न करोत्यहो वनचरम। अहो आश्चर्य की बात है, वनचरम जंगल में रहने वाला वो कन्नप्पा नामक भील जाति का आदिवासी, उसके पास कपड़ा नहीं, उसके पास घर नहीं, जंगलों में रहता था, पेड़ के नीचे सोता था, लेकिन शिव पूजा इस तरह किया करता था वो। हाँ, तो एक दिन वो इसी तरह कर रहा था पूजा, उसके आगे चरित्र आएगा, इसमें नहीं आएगा उसका, लेकिन शिव पुराण में है, शिव भक्तों के इतिहास में वो चर्चा है। एक दिन वो अपने पांव के जूते से, पांव से शिवलिंग में जो मैल जम गया था उसको घर से रहा था, तो अचानक वहां से रक्त निकला, ब्लड निकला। तो एक हाथ में तो मांस था, मुख में पानी, हाथ में धनुष बाण, तो पांव से घसर रहा था, रगड़ रहा था, तो अचानक रगत आ गया, ब्लड आ गया। अरे रे रे रे, मैं असावधानी से, मैंने असावधानी की और भगवान शिव के आंख में चोट आ गया। ये तो आंख के, भगवान शिव के आंख फूट गए मेरे असावधानी से, क्या करूं? तो आज जो वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग आई ट्रांसप्लांट करते हैं, वो उसको पहले ही पता था, उस कन्नप्पा को। उसने कहा कि अब क्या करें? तो बोले, अरे क्षमा करना भगवान, अपनी आंख निकाली और लगा दी। हाँ, अपनी आंख निकाल के जोड़ दिया वहीं, तो रक्त आना बंद हो गया। थोड़ी देर फिर अब तो ठीक हो गया करके वो रगड़ रहा था शिवलिंग, दूसरी जगह से फिर रगत ब्लड आ गया, खून आ गया। अरे राम राम, दूसरा आंख भी फूट गया, अब क्या करूं? बोले, दूसरा आंख लगा देता हूं, और क्या, मेरा भले आंख चले जाए, भगवान के नेत्र नहीं जाना चाहिए। उसने दूसरे आंख निकालने लगी, लगा, बोले एक आंख तो मेरा पहले गया है, और दूसरा आंख निकालूंगा तो मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, लेकिन कहां पर लगाना है वो मुझे मालूम कैसे होगा? तो कहते हैं कि उसने अपने पांव के अंगूठा उस जगह पर पहले अड़ा दिया, यहां पर लगाना है। अड़ाकर उसने दूसरे आंख भी जब निकालने की कोशिश की, तो भगवान प्रकट हो गए, कहा कि हे भक्त, बस तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, है ये तो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी। भक्त भक्ति क्या नहीं करते हैं भाई, है भक्ति और भक्त मिलकर क्या नहीं करते है भाई? वही कहते हैं, मार्गावर्तित पादुका पशुपते रंगस्य कुर्चायते गंडूसा मुनिसेचनम पुररिपोर। यहां ये कहने का अभिप्राय ये है, भगवान की पूजा में भावना शुद्ध होना चाहिए, वस्तु जैसा भी हो चलेगा। हम लोगों की परिस्थिति क्या है, भगवान के पूजा की जो सामग्री में वस्तु की शुद्धता में हम ध्यान रखते हैं, और भावना जैसे भी हो, भावना इतनी दूषित है, सारे विकार हमारे भावना में भरी हुई है, खाली हम वस्तु की शुद्धता, भगवान को खाए बिना जूठा खाया हुआ भोग नहीं लगाना चाहिए, हम वस्तु पर शुद्धि पर ध्यान देते हैं, लेकिन भावना हमारा जो इतना बिगड़ा हुआ है। और इस भक्त का वस्तु की शुद्धि पर विचार नहीं, उसकी भावना शुद्ध है। ये श्लोकों का अभिप्राय यह है कि भगवान की भक्ति करने वालों को भावना शुद्ध होना चाहिए, वस्तु जैसा भी हो चलेगा, जो तुम्हारे पास है उसी वस्तु से तुम शुद्ध भावना से भगवान की आराधना करो। भक्ति किम न करो त्यो बनचरो भक्ता वतंसायते, भगवान तो भक्ति के बस में रहते हैं। और आगे क्या कहेंगे फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सत्करं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने। ओम नमः शिवाय।
0: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय।

सीधा पी भा छिंदी बिंदी, इससे में इसमें जो लगे रहे हैं उसका नाम राक्षस है। छिंदी बिंदी मतलब कि जो हमेशा मार काट में साम्राज्य के बढ़ाने में लगे रहते हैं उनका नाम है राक्षस। आप साम्राज्यवादी को भी राक्षस कह सकते हैं भगवान शंकराचार्य के शब्दों में। और देवता वे हैं जो कि दमनशील है, अपने इंद्रियों को मन को वश में करके अपने स्वरूप का चिंतन करते हो, उनका नाम है देवता। तो चाहे कोई आसुर प्रकृति का हो, चाहे राक्षस मल्लय की छिंदी बिंदी स्वभाव का हो, चाहे देव स्वभाव का हो, जब हलाहल निकला तो सबने भगवान शंकर को पुकारा। ऐसे ही हमारे जीवन में चाहे हम किसी भी प्रकृति के स्वभाव के हो, जब अविद्या रूपी हलाहल से आप परेशान होना, इधर उधर नहीं जाना, सीधे कैलाश, और वह कैलाश आपके बंबई में प्रेमपुरी ही है, क्योंकि हिमालय की तराई में, हिमालय की गोद में ऋषिकेश है। ऋषिकेश आगे बिल्कुल हिमालय की पहाड़ी पहाड़, वहीं शुरू हो जाता है, कैलाश आश्रम है। उसकी दिव्य घटना है, कुछ लोगों को पता भी होगा। लगभग 150 वर्ष पहले वहां का जो संस्थापक आदि महाराज, जिनका नाम था धनराज गिरी जी, उस समय वहां सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को पढ़ते पढ़ाते थे। रात को कई बार सपने हुए कि मैं गंगा के प्रवाह से बहने जा रहा हूं, इसीलिए तुम जो है उठाकर अपने आश्रम में प्रतिष्ठित कर दो। 2-3 बार सपना हुआ। जगने के बाद उन्होंने कहा कि ये सपना हो रहा है, इस सपना का रहस्य क्या? सो गए पूरा। जब ब्रह्म मुहूर्त में सपना हुआ तो सपने में उन्होंने प्रश्न किया कि मैं विरक्त सन्यासी ठहरा, आप यदि मैंने प्रतिष्ठित कर दिया आश्रम में तो आपकी पूजा नैवेद्य ये सब इसकी सेवा कौन करेगा? मैं तो विरक्त ठहरा, इसके लिए नित्य पुजारी रखना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, फिर धन धान्य की व्यवस्था करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने सपने में कहा कि तू केवल मुझे वेदांत का श्रवण कराना और सारी व्यवस्था मैं स्वयं संभाल लूंगा। इस सपने की घटना है। उस जमाने में इतने साधन नहीं थे, केवल जो है ना 2 तांगा चलता था कहते हैं, वो भी समय से ऋषिकेश हरिद्वार के लिए 2 तांगे चलते थे। अब तो 24 गाड़ियां चल रही हर 5-1 मिनट में। तो धनराज गिरि जी महाराज जैसा सपना हुआ था उसी सपने के आधार पर 8-10 महात्माओं को लेकर पैदल ही ऋषिकेश से हरिद्वार चल पड़े, जो लगभग 22 किलोमीटर है। जब चल करके आए तो उस सेठ भारामल की बगीची है कनखल में, जहां पर साधना सदन आश्रम है। तो कनखल में भारामल की बगीची में जब पहुंचे तो जैसा सपने में नजारा था वही उनको दिखाई पड़ा। गंगा जी के प्रवाह से मंदिर ढह चुका है और शिवलिंग भी बहने वाला है। अपना स्वस्ति वाचन करते हुए महादेव को कंधे पर उठा करके ऋषिकेश ले आए और प्रतिष्ठित कर दिया। तब से आज तक ऋषिकेश कैलाश आश्रम में हमेशा वेदांत का अध्ययन अध्यापन चलता रहता है। और उसी 5वीं कड़ी में प्रेमपुरी जी महाराज हुए, जिन्होंने सोचा कि इसी ज्ञान गंगा को प्रेमपुरी में भी बसाना है, तो उसी ज्ञान गंगा को इस प्रेमपुरी आश्रम को उन्होंने स्थापित किया, जहां पर अनवरत अक्षुण रूप से हमेशा स्वाध्याय प्रवचन का प्रवाह चलता आ रहा है। तो जब भी आपको अपने काम धंधे व्यवसाय में कोई पीड़ा हो, हलाहल मल्लय की दुख, उस समय यदि आप स्वाध्याय सत्संग का अवलंबन लेंगे, क्योंकि तो महादेव की प्रतिज्ञा है कि केवल मुझे तुम वेदांत का श्रवण कराओ और सारी जिम्मेदारी ही हमारी है। यदि हम श्रवण करेंगे तो निश्चित ही महादेव हमारे जीवन के जैसे कि देवता

के असुरों के हलाहल की समस्या को भगवान ने हल कर दिया, समाधान कर दिया। इसके बाद जब कामना होगी तो कामना को ही भगवान अपने तीसरे नेत्र से दग्ध कर देते हैं। कामना का नाश दो तरह से होता है, या तो कोई कामना न हो या हमारी कामना परिपूर्ण हो जाए। दो ही उपाय है। सबसे अच्छी उपाय कोई कामना हो ही ना, और यदि कोई कामना हो गया तो कामना को पूरा करना हो तो श्रुति के अनुसार आपको आत्म काम होना चाहिए। जब आत्म काम होंगे तो आप्त काम, आप मतलब परिपूर्ण, सारी कामना अपने आप परिपूर्ण हो जाती है। पर जीवन में हमें यदि कोई ऐसे हलाहल विष का दुख का सामना हो तो हमें सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले आत्मा की कामना करें, शिव की कामना करें। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब आगे भगवान की जिम्मेदारी है, जो भुवन भय भंगव्य शनिना, कि आपके भय को दूर करना, कामना को दग्ध करना। इसके बाद ज्ञान गंगा का अवतरण होना। और इसमें एक ही बात आपको सावधानी बरतनी है कि नहीं बसीशु पथ्य परिभव, किसी का तिरस्कार न होना पाए, न होने पाए। क्योंकि श्रुति कहती है सर्वम खलमिदम ब्रह्मा, ये पूरा प्रपंच ब्रह्ममय है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। किसी का तिरस्कार होता है तो उसके अंतःकरण से श्राप मिलता है। एक वागीश नाम के बड़े भारी शिवभक्त हो चुके हैं, उनका पुराना नाम था ज्ञान भृत। अज्ञान भृत भगवान शंकर की नित्य पूजा करते, बड़े भारी अच्छे विद्वान थे, वेदांती भी थे। परंतु एक दिन किसी सन्यासी के पास गए, बेचारे सन्यासी महात्मा पढ़े लिखे बहुत कम थे, भजनानंदी थे। उनसे उन्होंने मजाक में कहा कि आप क्या ये कंकड़ पत्थर की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ये तो न बोलता है न चलता है, इसकी पूजा करने से क्या फायदा। ये शरीर ही आत्मा है, शरीर ही ब्रह्म है, सब कुछ शरीर ही है। हालांकि यह पूर्व पक्ष था, उन्होंने उस बाबा जी की परीक्षा के लिए ऐसा बोला था, उनके बोलने का ऐसा भाव नहीं था। कई बार ऐसा होता है ना कि हम पढ़ लिख कर विद्वान होकर के भी अज्ञानियों की तरह विनोद के लिए किसी से या परीक्षा के लिए बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अज्ञान भृत ने बाबा जी से मजाक किया कि कंकड़ पत्थर फेंको, इससे कुछ नहीं होता है, ये शरीर ही आत्मा है और मध्यम परिमाण आत्मा का स्वरूप है। ये चारवाक भी ऐसा ही मानता है, चारवाक की मान्यता है कि मध्यम परिमाण आत्मा है। मध्यम मतलब कि जितना शरीर का आकार प्रकार है उतना ही आत्मा है, इससे भिन्न आत्मा नामक कोई चीज नहीं है। इसीलिए आप इस सब पूजा को, कंकड़ पत्थर की पूजा को छोड़ो। महात्मा जी ने हाथ जोड़कर बोला कि देखो भाई, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर हमारे गुरुजी ने बताया है, मैं वैसा कहता हूँ करता हूँ, परंतु यदि तुम्हारे वाक्य में वेद प्रमाण हो तब तो मैं तुम्हारी बात मान लूं और कंकड़ पत्थर की पूजा छोड़ दूंगा। उसने कहा कि वेद में सब बकवास है, वेद अज्ञानियों के लिए है, ये पुराने जमाने की बात है, जमाना बदल गया, कंप्यूटर युग आ गया है। ऐसा कहना था कि महात्मा जी कुपित हो गए, बोले कि तू इतना बड़ा भारी विद्वान है, ब्राह्मण है, मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, जैसा गुरुजी ने बता दिया वेद में कहा वैसा मैं केवल श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता हूँ, और तू कहता है कि वेद में सब बकवास है, कि पुराने जमाने के बाद एक कंप्यूटर युग आ गया। बहुत क्रोध आया, अक्रोध में कह दिया कि जा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, आज के सातवें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं अब खाना पीना छोड़ दूंगा। इतना क्रोध है कि महात्मा जी खाना पीना छोड़ दिए। बोले जब तक तू वेद निंदक नहीं मरेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, अनशन कर लिए। हालांकि वो ब्राह्मण चरणों में गिर गया, क्षमा याचना किया, बोले कि नहीं
तूने हमारे भगवान की निंदा की है, तूने वेद की निंदा की है, मैं क्षमा नहीं कर सकता। और 7 दिन के पहले वो ब्राह्मण महात्मा के क्रोध से उसका मल्लर के मरण हो गया। मरने के बाद वही अज्ञान भरित दूसरे जन्म में पुनः वागीश नाम से ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। यहाँ पर जन्मने के बाद महात्मा के श्राप से यहाँ पर भी वह नास्तिक बना। पूरा परिवार उसका आस्तिक, बहन नास्तिक, पिता नास्तिक, सब नास्तिक, परंतु ये वागीश बड़े भारी नास्तिक बने। इनकी बहन बड़ी आस्तिक थी, इसका नाम था तिलिकावती। तिलिकावती ने भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना किया कि हमारे कुल में कोई भी नास्तिक नहीं, पर ये हमारा भाई इतना बड़ा भारी विद्वान होकर के भी नास्तिक क्यों है। तो महादेव ने सपने में कहा कि तू चिंता छोड़, ये जन्मांतर में किसी सन्यासी महात्मा का तिरस्कार किया था, उसी के श्राप से उसकी मृत्यु हुई और इस जन्म में इसको नास्तिक पना मिला, परंतु कुछ काल के बाद पुनः यह आस्तिक बन जाएगा। तिलिकावती ने, जो उसकी बहन है, बहुत भगवान से प्रार्थना किया कि आप महादेव हैं, सर्वसमर्थ हैं, आप कृपा करके इसे अपने चरणों का दास बना लीजिए। भगवान शंकर की प्रेरणा से उस वागीश के पेट में बड़ा भयंकर पीड़ा हुई, परेशान। वह नास्तिकों के पास गया, बोला कि मैं बहुत पीड़ित हूँ, जैसे भी हो हमारे उदर शूल को आप लोग नष्ट कीजिए। बहुत दवा किया, टोना झाड़ फूक किया, सब कुछ किया, फिर भी उदर शूल नष्ट नहीं हुआ, उल्टे वह बढ़ते गया। अंत में सारे वैद्य और उसके जो झाड़ फूक करने वाले हैं सब इधर उधर भग गए, अकेले पड़ गया। सबने घोषित कर दिया कि अब तू नहीं बचेगा। उसके सेवा में एक दासी थी, उसको रात को अचानक अपने बहन का याद आया कि हमारी बहन भगवान शंकर की भक्ता है, शायद वह मुझे बचा ले। संदेश भिजवाया, संदेश लेकर वह दासी तिलिकावती के पास आती है। तिलिकावती ने कहा, मुझे बहुत दुख है कि हमारे भाई मरणासन्न है, पर जाकर उसको कहना कि मैं तो आ नहीं सकती हूँ नास्तिक के बीच में, परंतु वह आ जाए तो मैं उसे बचा लूंगी। बस खबर सुनते ही तत्काल वह वागीश अपनी बहन के पास आता है और आकर चरणों में गिर पड़ता है, बोलता, बहन तुम जैसे भी हो मुझे बचा लो। बहन ने कहा कि पहले तू गंगा, पहले इस नदी में, जो नदी थी वहां स्नान करके आ। स्नान करके आया, उसके माथे पर भस्म लगाया, रुद्राक्ष की माला पहनाया, इसके बाद पंचाक्षरी मंत्र का जप करने को बताया। जप करने वह बैठा, इधर तिलिकावती भगवान के मंदिर में जाकर आंख बंद कर अपने हृदय से प्रार्थना किया कि भगवान आप जैसे भी हो इसकी पीड़ा को दूर कीजिए। भगवान तिलिकावती की प्रार्थना को स्वीकार करके तत्काल उसको भगवान ने एक भस्म दिया। भस्म को ले आकर के जल में घोलकर पिला दिया, पीते उसका उदर शूल दूर हो गया, परम आस्तिक बना। विद्वान तो पहले से था ही, अब वह सही मत का प्रचारक बन गया। परंतु जो उसके नास्तिक साथी थे उन्हें रहा नहीं गया, उन्होंने राजा के पास जाकर शिकायत कर दिया, यह जो वागीश है हम लोगों से तंत्र मंत्र सब कुछ सीख लिया है और झूठ मूठ का उदर शूल का बहाना करके ये पुनः सही मत का प्रचारक प्रचार कर रहा है। उस देश का राजा उस समय नास्तिक ही था। राजा ने वागीश को बुलाया और कहा, ये तुम बड़ा अधर्म कर रहे हो, ठीक नहीं है। वागीश ने कहा कि फिर शास्त्रार्थ हो, किसका मत सही है किसका मत गलत है, इसके लिए शास्त्रार्थ होना चाहिए। राजा ने शास्त्रार्थ के लिए मना कर दिया
उन विधर्मियों ने कहा कि इसने सारे जादू मंत्र तंत्र हमसे सीख लिया है और सीख करके इसका दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए इसको मौत की सजा होनी चाहिए। चूंकि राजा भी नास्तिक था, राजा ने कहा कि हमारा धर्म है अहिंसा परमो धर्म, इसको हम कैसे मार सकते हैं। बड़ी अच्छी युक्ति उन्होंने बतलाई, कैसा करो, एक कमरे में चूना भर दो और चूने कमरे में इसे डाल दो और गले तक चूना से इसको ढक दो, इसके बाद बाहर से तरा लगाकर पानी डाल देना, अपने आप खोलेगा तो मर भी जाएगा और हिंसा भी नहीं होगी, क्योंकि अहिंसा जो है आपका धर्म, हिंसा तो कर नहीं सकते, अपने आप मर जाएगा ये चूने में जो है। राजा ने ऐसा ही किया, एक कमरे में पहले वागीस को खड़ा किया, चारों तरफ से गले तक चूना भर दिया, बाहर से ताला बंद करके पानी जल डलवाया। 7 दिन तक वागीस भगवान शंकर का स्मरण करते हुए बहुत ही आराम से पड़े रहे, जो ताला खुला तो बिल्कुल वैसे ही। नास्तिकों ने कहा कि राजा चिंता की बात नहीं, किसने एक मंत्र सीखा है, उस मंत्र के बल से ये बच गया। अब आप ऐसा करो, भोजन में पॉइजन मिला करके खिला दो इसको। वैसा ही किया जैसे मीरा को राणा ने किया था, खीर बनवाई, खीर में उसने विष डलवा दिया, विष दे करके कहा कि तुम इसको ग्रहण करो। वागीस भगवान शंकर का स्तवन किए कि आप तो हलाहल विष को भी हजम करने वाले हैं और आप सर्वत्र विद्यमान है, आप हमारे हृदय में भी हैं, तो आप इस विषाक्त खीर को स्वयं ही भोग लगा लीजिए। विषाक्त खीर के खाने पर भी वागीस का कुछ भी नहीं बिगड़ा, जस की तस। फिर नास्तिकों ने कहा कि राजन ऐसा करो, इसको हाथी के पैरों तले कुचलवा दो, ये बड़ा महापात की है, ये कुल कलंक है, हमारे नास्तिक परंपरा में रह करके और सही प्रचार करने लगा है, ठीक नहीं है। एक मदोन्मत्त हाथी को बुलवाया, पिलवान उसको अंकुश मारा, वह दौड़ते दौड़ते वागीस के पास आया, जैसे ही आया वैसे ही सामने सुन उठाकर खड़ा हो गया, चारों तरफ परिक्रमा करके वापस चला गया। इसके बाद नास्तिकों ने कहा कि ऐसे नहीं मरेगे, बड़ा मंत्रज्ञ है, अब इसको आप समुद्र में बहा दो सीधे, समुद्र में तो कोई इसको नहीं बचा सकता, तंत्र मंत्र भी काम नहीं करेगा, एक बड़े शिला में बांध करके इनको समुद्र में डाल दिया। इन्होंने उस शिला में नाव की भावना किया, वो शिला तैरने लग गई, राजा देखा कि आराम से तैरते हुए जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना किया कि हमने नास्तिकों के कारण से बहुत दंड दिया, पर मैं देख रहा हूं आपका बाल बांका नहीं हो रहा। नास्तिकों ने कहा कि राजन, यदि आप जो है इसके चमत्कार से प्रभावित होकर हमारा मत छोड़कर यदि आप वैदिक मत स्वीकार करते हैं तो इस देश में संग्राम हो जाएगा। राजा को पहले तो बहुत क्रोध आया, पर मंत्री ने समझाया कि आप क्रोध न करें, इसकी पहले बात सुने। नास्तिकों ने कहा कि आप शास्त्रार्थ करवाइए, शास्त्रार्थ में जिसका मत जो है हार जाए, जो अपने शास्त्रार्थ से हार जाए उसका मत जो है आप छोड़ दीजिए, जीते हुए ग्रहण कर लीजिए। 36,000 विद्वान जो नास्तिक पक्ष में थे, केवल 50 ब्राह्मण आस्तिक थे, वे भी डरते थे काफी। शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ में वागीस ने पूरे उस नास्तिकों को के मत का खंडन कर दिया। खंडन करने के बाद वागीस ने कहा कि या तो ये देश छोड़ दें या ये वैदिक मत को स्वीकार करें। सभी नास्तिकों ने वैदिक मत स्वीकारा है और अंत में कुछ जो नास्तिक बचे हुए देश से चले गए। ये घटना आपके दक्षिण भारत की है, बहुत पुरानी नहीं है, लगभग जो है 800 वर्ष पुरानी घटना है।
तो भगवान के भक्तों का तिरस्कार करता है। तिरस्कार करने वाला कभी भी भगवान के कोप से बच नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर पुष्प दंताचार्य जी ने सावधान कर दिया कि नहीं बसीसु पथ्य परिभव, यदि हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा चाहे कितना ही बड़ा कोई कामदेव से भी सशक्त क्यों न हो, वह भी जलकर राख हो जाता है। क्योंकि तो भगवान अपने भक्तों के रक्षक हैं, भक्त वत्सल हैं। प्रहलाद के साथ उसके पिताजी ने क्या क्या अत्याचार किया, भगवान को तत्काल अवतार लेना पड़ा, वो भी विलक्षण अवतार लेना पड़ा नरसिंहाकार। तो भगवान कब कहां कैसे किस रूप में आएंगे ये जो है मनुष्य सोच नहीं सकता है। भगवान शंकराचार्य ने शंकर भाष में एक बड़ा सुंदर श्लोक उद्धृत किया है, अचिंत्या ये खलु भावा तांश तु तर्केश नैव योजयेत, प्रकृति व्यश्च परम यच्च तद अचिंत्यस्य लक्षण। किसी ने पूछा कि भगवान अचिंत शक्ति सामर्थ्य वाले हैं, अचिंत मतलब कि मन वाणी से हम चिंतन नहीं कर सकते, तो अचिंत हम किसे कहते हैं? तो आचार्य ने कहा कि प्रकृति के नियम से जो ऊपर है उसका नाम है अचिंत्य। जैसे प्रकृति का नियम है कि मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है ना, गाय से गाय का बछड़ा, सिंह से सिंह का सावा, कुत्ता से कुत्ता का सावा, ये प्रकृति का नियम है। परंतु जो भगवान है इस प्रकृति के नियम से अतीत है, ये प्रकृति का कोई भी कानून कायदा उनको बांध नहीं सकता है। ये तो पाषाण से भी उत्पन्न हो जाते हैं, वाराह से भी वाराह अवतार हुआ है, ग्रीवा अवतार हुआ। तो भगवान प्रकृति से परे होने के कारण से प्रकृति व्यश्च परम यच्च तद अचिंत्य लक्षणम, जो प्रकृति के गुण धर्म से अतीत है वही अचिंत्य परमात्मा है, जो हमारे मन बुद्धि का विषय नहीं, वह तो केवल श्रद्धा विश्वास का विषय है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण सृजन के पहले श्रद्धा विश्वास का वर्णन करते हैं, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थीश्वरम्। कि श्रद्धा विश्वास साक्षात भगवान शंकर और पार्वती का रूप है, जिसके बिना हम भगवान हमारे सामने आ भी जाए तो भी समझ नहीं सकते। दुर्योधन के सामने ही भगवान श्री कृष्ण है, इधर जो है अर्जुन के सामने भी है, उसी सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जी भगवान के विराट रूप को देख के नमस्कार कर रहे, वंदना कर रहे हैं। वहीं पर दुर्योधन दुशासन रस्सी लेके बांधने का प्रयास कर रहे हैं, जो सारे जीवों को बंधन मुक्त करता है उन्हें बंधन में डालने के लिए प्रयासरत है। तो भगवान आ भी जाए, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, शास्त्रों का संस्कार नहीं, तो हम पहचान नहीं पाएंगे। जैसे दुर्योधन अंतिम समय तक भगवान को एक चमत्कारिक पुरुष मानता रहा कि मायावी है, इससे अधिक कुछ भी नहीं, तो उसकी दशा क्या हुई सबको विदित है। इसलिए हमें श्रद्धा विश्वास के द्वारा भगवान के स्वरूप को स्वीकारना चाहिए। उपनिषद में कहा है कि वह जब तत्व मन वाणी का विषय है ही नहीं तो उसको कैसे समझा जाए। तो कठोपनिषद में कहा अस्ति ते उपलब्धव्यः तत्व भाविन चोभयो, यमाचार नचिकेता को बोलते हैं अस्ति मतलब आत्मा है, इस प्रकार से आत्मा के सत्ता को स्वीकारने से वही उपलब्ध होता है।
जैसे कि डॉक्टर कोई दवाई दिया, आपको पता नहीं कि दवाई कहाँ निर्मित हुई, किसने बनाया, कैसे बनाया, पर आप भरोसा करके दवाई खाते हैं। यदि आप संशय करें, क्या पता ये पॉइजन है कि दवाई, किसने देखा, किसने जाना, तो संशय करते रहो, तो संशयात्मा विनश्यति, हमें श्रद्धा और विश्वास के द्वारा उस सत्ता को स्वीकारना चाहिए। स्वीकारने के बाद उसकी स्वयं अनुभूति होती है। प्रेम।

आदरणीय स्वामी जी, तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग वैदिक शांति पाठ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। क्रम से पढ़े जाने वाले 10 वैदिक शांति मंत्रों में हम लोग छठे क्रम का सामवेदीय शांति पाठ का विचार कर रहे हैं।

0: शांति ही। तो देखिए ये जो शांति पाठ है, जैसे कि आपको बताया कि सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद में ये मंगल रूप में पठित है और ब्राह्मण भाग के छांदोग्य उपनिषद में भी ये पठित है। विघ्न निवृत्ति के लिए जैसा कि आपको बताया कि मंगल पाठ किया जाता है, मंगल पाठ में परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि हम यदि वेदाध्ययन करने के लिए प्रवृत्त हो तब हमारा ये जो पूरा कार्यकरण संघात है वो अनुकूल हो जाए, क्योंकि उपनिषद जो ब्रह्म है, उपनिषद प्रतिपाद्य जो तत्व है ब्रह्म है, उसका ज्ञान अग्रबुद्धि से होता है। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, सूक्ष्म दृष्टि, और वो तभी होगी जब हमारा पूरा कार्यकरण संघात वो संयत हो, इसलिए प्रार्थना की जा रही है। तो ये शांति पाठ के अंदर जो कही गई प्रार्थना है उनको समझने के लिए, शांति पाठ का जो हार्द है, उनकी जो गहराई है, वो गहराई तक जाने के लिए जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि इसके सात वाक्य बनते हैं शांति पाठ के। दो वाक्यों के ऊपर कल हम लोगों ने विचार किया था। पहला वाक्य बनाया था मम अंगानि वाक प्राण चक्षु श्रोत्रम च सर्वाणि इंद्रियाणि चाप्यायन्तु। इसका अर्थ है कि मुमुक्षु प्रार्थना करते हुए यहां पर कहते हैं कि मेरे जो अंग है वो आप्यायन्तु। आप्यायन्तु यानी कि पुष्ट हो, पुष्ट हो यानी कि शरीर से, अन्न जल से तो ठीक है पुष्टि अलग है, किंतु यहां पुष्टि का अर्थ है ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए। मेरे सभी अंग है वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए उत्सुक हो जाए, तैयार हो जाए, तद अनुकूल हो जाए। कौन कौन से अंग? तो खुद बताया वाक, वाणी, और वाणी से कर्मेंद्रिय पंचक ले लेना है। फिर कहा चक्षुः श्रोत्रम्, चक्षु और श्रोत्रम् को उपलक्षण मान करके ज्ञानेन्द्रिय पंचक ले लेना है, और प्राण, प्राण से प्राण पंचक ले लेना है, तो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और प्राण, ये जो सब है वो, और सर्वाणि इंद्रियाणि, इससे ये भी ले लीजिए बाह्य इंद्रिय, अंतर इंद्रिय, वो सब ले लीजिए। बाह्य इंद्रिय वो है जो बाहर की ओर देखती है, बाह्य पदार्थों को जो देखती है। ज्ञान इंद्रिय है वो किसको देखती है? बाहर। कर्म इंद्रिय जो कर्म करती है। अंतर इंद्रिय है मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण जिसको कहते हैं, अंतः यानी अंदर के करण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो भी आप्यायन्तु। यानी कि ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो। देखिए आप अध्ययन करने बैठे और इंद्रिया यदि चंचल है, कहीं अन्यत्र जा रही है, मन अन्यत्र जा रहा है, तो क्या श्रुतार्थ ग्रहण होगा? नहीं। मन 2-5 सेकंड के लिए भी विचलित हो गया, व्यग्र हो गया या अन्यत्र चला गया, और फिर पूछो क्या सुना, तो तुरंत कहेंगे अरे पता ही नहीं चला, मेरा तो ध्यान ही नहीं था। वो ध्यान कहां गया था? अन्यत्र चला गया। तो विक्षेप हुआ कि नहीं? फिर वेदार्थ समझ में नहीं आएगा। ग्रंथार्थ का जब तक श्रवण ही नहीं होगा, तब तक जो है फिर विस्मरण की बात तो दूर। इसलिए श्रवण के लिए ध्यान किधर चाहिए? अध्ययन की ओर। और यदि नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं कि मेरा ध्यान नहीं था, तो ध्यान किधर होना चाहिए? ये जो है ब्रह्म की ओर। इसलिए भावना की गई कि ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए, अन्यत्र न जाए, किंतु ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए। ये एक वाक्य हुआ, इसका विचार हम लोग कर चुके इस वाक्य का। अब दूसरा वाक्य ये है, सर्वम औपनिषदम ब्रह्म। ये दूसरा वाक्य है। इसमें ये कहा गया कि सर्वम औपनिषदम ब्रह्म। सर्वम से ग्राह्य है पांच भौतिक संसार, दृश्यमान सारा संसार वो सर्व शब्द से ग्राह्य है। और वो जो ब्रह्म से अतिरिक्त हम जिसको मानते हैं, वो यहां तक कि जो संसार हमने देखा नहीं है, वो भी द्वीप दीपांतर जो भी है, स्थावर जंगम कहने से सब आ गया, वो सारा संसार क्या है? तो कहा औपनिषदम ब्रह्म एव। वो सारा संसार ब्रह्म है। ये कब अनुभव होगा ऐसा? जैसे कि ये जो पूरा कार्यकरण संघात ये उपनिषद के श्रवण में लगे, और मनन निदिध्यासन पूर्वक जब ये श्रवण में लगे, तो ये अनुभव होगा कि सर्वम औपनिषदम ब्रह्म। ये जो संसार में जो भी है दिखता है, वो सब क्या? ब्रह्म है, ऐसा अनुभव होगा। ईशावास्यमिदगुम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। कहा कि नहीं? ये सारा संसार जो है ईश से आच्छाद्य है, आच्छादन करने योग्य। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ईशा परमेश्वर के द्वारा ये आच्छादनीय है। अध्यारोप को हटाना है तो सर्वत्र क्या दिखेगा? ब्रह्म दिखेगा। अर्थात कि ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव, ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्य। जो भी हमको संसार दिख रहा है वो ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त नहीं है। कटक कुंडल आदि जो भी है वो सुवर्ण से अतिरिक्त नहीं है। घट शराब आदि है वो मृतिका से अतिरिक्त नहीं है। तो वो क्या है जिसको हम व्यवहार में लाते हैं? घट शराब आदि है, कटक कुंडल आदि है, उनका व्यवहार करते हैं, वो क्या है? तो कहा वाचा रंभणम विकार। कल बताया था ना? वो केवल वाणी का विषय मात्र है, वाद आलंबन मात्रम। भगवान भाष्यकार वहां कहते हैं वाचारंभम का अर्थ करते वाग आलंबन मात्रम, वाणी का विषय मात्र है, वाणी से केवल उनको बोल सकते हैं किंतु उसकी पृथक सत्ता आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। घट शराबादी की सत्ता मृतिका से अतिरिक्त नहीं है। यदि आप घट को मृतिका से अलग करने जाओगे तो घट नाम की कोई चीज ही हाथ में नहीं आएगी। और वर्तमान में घट जब दिख रहा है, घट में हम पानी भी भर रहे, उस समय भी हम यही निश्चय करके रखे कि ये मृतिका से अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है। इसी को चांदोग्य में बताया, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्याद् वाचारम्भणं विकारो नामधेय मृतिकेत्येव सत्यम्। वेदांत का सिद्धांत, एक ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो सबका ज्ञान हो जाता है। उद्दालक जी ने श्वेत केतु को पूछा कि तम आदेशम अप्राक्ष्य येन अश्रुतेन श्रुतम अमतेन मतम अविज्ञातेन विज्ञातम भवति इति। श्वेत केतु तो सुनकर के दंग रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ा विचलित हो गया कि पिताजी ये कैसे हो सकता। तो पिताजी ने दृष्टांत के द्वारा बताया, अभी जो मैंने उच्चारण किया यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन इत्यादि मंत्र का कहा, जैसे एक मृतिका के पिंड से बने हुए जितने भी घट शराबादी है वो सब ये मृतिका है, ऐसा जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता है। फिर अलग से ये घट है वो मृतिका है कि नहीं है, शराब वगैरह कुल्हड़ वगैरह ये सब मृतिका है या मृतिका से अतिरिक्त है, उसको अलग से जानने की जरूरत रहती नहीं है। कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि कारण से कार्य की भिन्न सत्ता नहीं है। मृतिका की सत्ता से ही घट शराब आदि की सत्ता है, इस तरह से ये ब्रह्म सत्ता से ही ये सारे संसार की सत्ता है। ब्रह्म नहीं है तो संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। अच्छा एक यहां बात बताइए, सर्वम ब्रह्म एव ये तो ठीक है किंतु औपनिषदम ब्रह्म एव ऐसा कहा, ये जो है वह सब कैसा है? औपनिषदम ब्रह्म, ये बहुत विलक्षण है। ब्रह्म तो ठीक है किंतु औपनिषदम, देखो ये तभी समझ में आएगा जब उपनिषद का अध्ययन करेंगे। ब्रह्म कैसा है? उपनिषद एक समधिगम्य, शास्त्र के द्वारा ही जिसका ज्ञान होता है उसको कहते हैं औपनिषदम ब्रह्म। या आपको कर चरणादि से चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा वो नहीं दिखेगा किंतु किससे? तो कहते हैं केवल शास्त्र से। ये जो सारे संसार के अंदर परमात्मा व्याप्त है वो आप उसको बाहर अन्य प्रमाण से ढूंढने के लिए जाएंगे तो कहीं भी नहीं मिलेगा। वो केवल उपनिषद के द्वारा, उपनिषद के श्रवण से ही ये पता चलेगा। इसलिए ब्रह्म है वो औपनिषदम है, अन्य प्रमाण से आप उनको नहीं जान सकते। इसलिए जो उपनिषद को नहीं मानते, वेद को प्रमाण रूप से नहीं मानते, वो लोग ईश्वर को भी नहीं मानते, क्योंकि ईश्वर का जो है अस्तित्व केवल शास्त्र के द्वारा ही है। यदि शास्त्र वाक्य नहीं है तो आप ईश्वर का अस्तित्व आप सिद्ध ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात है कि ये सारा संसार है वो परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है, ये बात भी आप शास्त्र के द्वारा ही जान सकते हैं, अन्य किसी प्रमाण से नहीं। आचार्य बादरायण जी ने जब ब्रह्म जिज्ञासा का सूत्रण किया कि जिज्ञासा करनी चाहिए ब्रह्म की, तो प्रश्न उठा कि ब्रह्म है क्या, ब्रह्म का क्या लक्षण है? तो कहा जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय जिससे है उसको कहते हैं ब्रह्मा। और इस अधिकरण में वो तैतरीय श्रुति का विचार किया, यतोवा इमानी भूतानी जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विसंविशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। अब यही कहा यतः, जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिसमें रहते हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं, तद् ब्रह्म वो ब्रह्म है और वो विजिज्ञासस्व वो जिज्ञास्य है। तभी सारा संसार जो है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ये बात भी केवल उपनिषद से ही जानी जा सकती, अन्य किसी प्रमाण से नहीं, प्रत्यक्ष से भी नहीं, अनुमान से भी नहीं, केवल उपनिषद के द्वारा। इसलिए कहा शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र से ही जान सकते, ईश्वर को ही शास्त्र से ही आप जो है सिद्ध कर सकते, अन्य किसी प्रमाण से नहीं। ठीक है, ये जो संसार है वो ईश्वर की साबिती है, ब्रह्म की साबिती है, किंतु वो ब्रह्म कैसा है, ये जो संसार को बनाने वाला जो ब्रह्म है वो कैसा है, वो केवल उपनिषद से ही पता चलेगा, अन्य किसी प्रकार से नहीं। इसलिए ये जो संसार ऐसा है, इसलिए मानना ही होगा कि ये संसार ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य किसी भी कारण से बन भी नहीं सकता है, क्योंकि ये जो संसार है वो नाम और रूप से व्याकृत है। भगवान भाष्यकार ने कहा था नाम रूपाभ्याम व्याकृत, अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्त, प्रतिनियत देश काल क्रिया फलाश्रय मनसापि अचिंत्य। ऐसा जो संसार है उनको ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई बना ही नहीं सकता। आजकल एक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हो रही है, द ग्रैंड डिजाइनिंग। वो कोई इंग्लैंड में कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Paramashuddhaya Pratasmaraniyo Prempuri Adhyatmik Pitke Adishthata महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमशुद्धय प्रातस्मरणीय महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ विराजमान परमशुद्धय परमादरणीय श्री स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के पावन चरणों में नमन करते हुए मानवीय जीवन के सर्वांगीण उत्थान के लिए हमारे मनुष्यों ने जिस प्रस्थान त्रय का प्रतिपादन किया, 10 उपनिषदे, ब्रह्म सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता, ये प्रस्थान हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्रस्थान। हम 3 जगह से अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। हम अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा उपनिषदों से प्रारंभ कर सकते हैं, हम ब्रह्म सूत्र से कर सकते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता से भी कर सकते हैं। ये प्रस्थान है प्रस्थान, जैसे आप श्रवण करते हैं ना बस स्थानक, जहां से आप आगे की यात्रा कर सकते हैं वहां बस मिलेगी। ऐसे ये तीन हैं प्रस्थान त्रयी, और विशेष रूप से इसका प्रतिपादन करने के लिए कहा प्रस्थान, और उस प्रस्थान में जो उपनिषदें हैं दश, उनमें कठोपनिषद का सर्वोपरि स्थान और उस सर्वोपरि स्थान को देने वाली आख्यायिका है बालक निचिकेता की। बहुत ही सुंदर आख्यान, माने एक छोटा सा बालक भी कितनी प्रतिभा, कितना अपूर्व आचरण व्यवहार रख सकता है, इस आख्यायिका के द्वारा हमको मालूम पड़ता है। उषन हवय वाज श्रवसः सर्व वेद सम ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्रास। उद्दालक उनके पिता का नाम है और उनको वाजश्रवस कहकर उनके ऐश्वर्य का द्योतन किया। मैंने कल आपको कहा था आपको यदि कर्म करना है तो आपको विधि विधान से वेदों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन सिद्ध जो ज्ञान है वो कर्मकांड करने का प्रथम अधिकार है, और आपके लिए बहुत जरूरी है वेद मंत्रों के द्वारा अपने घर में अग्नि की स्थापना करना, ये दूसरा अधिकार है। और तीसरे अधिकार में कर्म करने की योग्यता के अंतर्गत आप में सामर्थ्य भी होना चाहिए। आप में यदि सामर्थ्य नहीं है तो वहां वेद आपको विधान नहीं करेगा। आपकी जो वेद विधि है वहां सार्थक है जहां पर उसका सामर्थ्य है। अब जैसे राजा राजस्वी यजेता, ये जो विधि है ना ये केवल उस राजा के लिए है जो राजस्वी यज्ञ कर सकता है, ये प्रत्येक राजा के लिए विधि नहीं है। अब मान लो कोई छोटा मोटा राजा है और वो सोचे कि वेद में कहा है कि मैं राजस्वी यज्ञ करूं, कहां से करेगा वो। ब्राह्मण के लिए सर्वोच्च यज्ञ है वाजपेय ने जित। अब वो सभी ब्राह्मण के लिए थोड़े हैं जो केवल भिक्षा मांग के खाता है, त्याग तपस्या में है, विरक्त है, अपरिग्रही है, ऐसे ब्राह्मण के लिए नहीं। जो संपन्न है, गुरुकुल निवास करता है, गुरुकुल चलाता है, और वैश्यों के लिए स्तोमेन यजेत कहा, स्तोम यज्ञ है वैश्य के लिए। अब ये सभी वैश्यों के लिए नहीं, जो पैसे वाला है संपन्न। और यहां पर भी नारायण ये तीसरा जो कर्मांग है आपके लिए सामर्थ्य, यज्ञ करने का सामर्थ्य वो था उद्दालक ऋषि में, इसका प्रतिपादन करने के लिए कहा वाज श्रवस। वाजम अन्नम तत्स्रवो यस्य स वाजश्रवा तस्य पत्यम वाजश्रवस। मने प्रचुर मात्रा में अन्नदान वो कर सकते थे, उनके पास सामर्थ्य था और वो यज्ञ कर रहे थे और बहुत विधि विधान से उन्होंने यज्ञ किया। तम तस्य नचिकेता नाम पुत्रास। जब यज्ञ जब चल रहा था ना तो वहां की परिस्थिति का वर्णन करते हुए श्रुति ने कहा उसका एक पुत्र था। अब वो पुत्र कैसे था ये आपको ध्यान से सुनना है। आपको गीता को समझना है तो आपको अर्जुन को समझना पड़ेगा। आप अर्जुन को समझे बिना आप गीता को समझ नहीं सकते हैं। जैसे श्रोता होते हैं ना वैसे वक्ता होता है, यथा श्रोता तथा वक्ता। जब ये सामने वाले श्रोता ऊंघने वाले हैं, समर्थ नहीं समझने में, तो फिर वक्ता को भी वैसे ही बोलना पड़ता है। आप बिल्कुल गांव में जाके कथा करना चाहो तो, एक बार की बात है, मैं गांव में कथा कर रहा था भागवत की, और वो बिल्कुल गांव था, वो आदिवासी गांव, और वहां मैं कथा कर रहा था। तो मेरे साथ कुछ नया एक पंडित जी आए हुए थे आचार्य के रूप में। उन्होंने किसी के पास बोला कि भाई हमने तो सुना था कि स्वामी जी तो बहुत विद्वान है और उनकी कथा सुनने जैसी होती है, लेकिन स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, बोले इससे तो ज्यादा मैं अच्छा बोलता हूं। तो शाम के समय फिर वो घूम फिर करके मेरे पास बात आ गई, बोले वो बोल रहे कि इनसे तो हम अच्छी कथा करते हैं। तो मैंने कहा बात सही बोल रहे हैं, यहां इस पंडाल में यदि इनको कथा करने के लिए दे दिया जाए तो मेरी कोई कथा नहीं सुनेगा। जैसे श्रोता होते हैं ना तो अपने आप वक्ता का वक्तृत्व वैसे प्रकट होता है। यदि पढ़े लिखे लोग हैं, सांख्य वेदांत न्याय आदि का यदि बोध हो, समझ लीजिए, तो वहां फिर वो सारी बातें निकलती हैं। इसलिए यहां पर भी आपको नचिकेता को समझना है। अब नचिकेता क्या चीज है, अब ध्यान देके सुनेंगे आप। वहां अर्जुन जो है ना प्रश्न है, मैंने आपको कल भी कहा था, और भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर है। यहां नचिकेता प्रश्न है और आचार्य यम उसका उत्तर है। और जैसा प्रश्न होता है ना, जितना स्ट्रांग उसका उत्तर भी वैसे होता है। अर्जुन के क्या प्रश्न है, उनकी व्यक्तिमत्ता क्या है, उस जमाने का सबसे बुद्धिमान, सबसे ईमानदार और सबसे बड़ा वीर व्यक्ति हैं, और वो प्रश्न पूछ रहा है। और उत्तर देने वाले कौन है, मेरे भगवान श्री कृष्ण, जिसकी उस जमाने में उस समय कोई बराबरी करने वाला नहीं था, उसके ऊपर की तो बातें छोड़ो। और भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, और एक आश्चर्य की बात, आप पूरे महाभारत को खोल के पढ़ना, भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह पर भी किसी को भी ज्ञान का उपदेश नहीं किया है, और अर्जुन को भी उपदेश नहीं किया। भगवान अभी तक अर्जुन के साथ वर्षों की दोस्ती निभा रहे थे, इतने दिनों से भगवान ने अर्जुन को कभी एक भी श्लोक सुनाया क्या, गीता का नहीं सुनाया, मालूम ही नहीं था कि वो इतना जानते हैं। अर्जुन को पता ही नहीं था कि इतना वो जानते हैं। और यहां तक अर्जुन ने तो केवल सुना था और श्रद्धा से मानता था कि ये भगवान है, लेकिन उसको भी संदेह था कि है भी कि नहीं, लेकिन इतना सभ्य था कि कभी उन्होंने प्रकट नहीं किया है। उनको भी भगवान की भगवत्ता का पता नहीं, उनको भी मालूम नहीं कि वो इतना

नहीं, वो बहिर्मुखता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहीं पर भी अर्जुन को ज्ञान नहीं बताया, क्योंकि जब तक पूछे नहीं तब तक कैसे बताए। आप बिना पूछे यदि बताएंगे ना तो उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। सांख्य कौमुदी में एक बड़ा सुंदर श्लोक दिया है, श्रद्धेय वचनो भवति प्रेक्षावताम। वो कहते हैं कि यदि प्रतिपिच्छितम अर्थम प्रतिपादयन प्रतिपादयिता श्रद्धी वचनो भवति। यदि आप पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आप उत्तर देने वाले श्रद्धावान बन जाते हैं, और आप बिना पूछे यदि बोल रहे हैं तो आप अपना मूल्य खो देते हैं। इसलिए इस शास्त्र से सीखना है, बिना पूछे आप ज्ञान देंगे तो आप उपेक्षित हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने नहीं, बिल्कुल नहीं, एक शब्द भी कहीं गीता का नहीं बोला है, गुपचुप है भगवान। और जैसे अर्जुन ने प्रश्न पूछा और ऐसा प्रश्न, आप पहले अध्याय को आप पढ़ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है विषाद योग। उस पर मैंने कुछ ऐसे प्रवचन किया था तो उसकी बुक बनाई, मैंने स्वामी जी के भी चरणों में निवेदन किया था कि अर्जुन क्या है। आपका जो पहला अध्याय है ना, हम लोग उपेक्षा कर देते उसकी, लेकिन अर्जुन गीता है ये, अर्जुन गीता पहला अध्याय माने अर्जुन गीता है, और संपूर्ण अर्जुन का व्यक्तित्व उसमें झलकता है। उसमें सारे लक्षण आपके वेदांत के अनुबंध चतुष्टय सारे अर्जुन में घट जाते हैं। और अर्जुन ने फिर समर्पण कर दिया, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चीता यच्छ्रे यह स्या निश्चितम रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न। आप इस श्लोक को पढ़ते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि अर्जुन कितने मन से समर्पित था। औपचारिकता नहीं है वहां, यहां अर्जुन का पूर्ण समर्पण रहेगा। इसलिए अर्जुन प्रश्न जब पूछ रहे थे ना तो ऐसा लगता है कि रोते भी रहे क्या, वो ऐसा लगता है कि वो प्रश्न ये समर्पण करते समय रो भी रहे। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, कार्पण्य माने कृपणता दैन्य। और अर्जुन कहता है कि उससे मैं बिल्कुल ढक गया हूं, ढक गया हूं। अपहत स्वभाव, मेरा जो वीरता का स्वभाव था, जो धर्म और विवेक का जो स्वभाव था, वो अपहत हो गया, ढक गया। और मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि श्रेय मेरे जीवन में क्या है, तो भगवान शाधि माम, आप मुझे उपदेश करो। त्वाम प्रपन्न, मैं आपकी शरण में हूं, शरण में हूं। इतना झुका हुआ अर्जुन भगवान के सामने कभी मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की जो उम्र थी ना, बराबर उम्र थी। वो तो दोस्त समझते थे, सखा, और अपने सखा के प्रति इतना समर्पण, वो तो बहुत बड़ी बात है। मित्र के प्रति इतना समर्पण नहीं होता है। आज अर्जुन उनके चरणों में झुककर हाथ जोड़कर बोले, शाधि माम, उपदेश करो उपदेश, और मैं आपके चरणों में समर्पित। और उसके बाद भी भगवान ने ज्ञान का उपदेश नहीं किया है। आप दूसरे अध्याय के प्रारंभ में आप देखना, अशोचान वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश भाष से, भगवान ने कहा बकवास है सब, ये क्या। और जब देखा कि नहीं, सच्ची श्रद्धा सच्ची लगन अब इसमें पैदा हुए, तब जाके भगवान ने ज्ञान का उपदेश किया है ना। और जो भगवान ने उपदेश किया है, आप गीता को पढ़ना है, गीता सचमुच आप कोई अनुवाद पढ़ते हैं ना तो उतना स्पष्ट नहीं होती भाई। गीता को समझने के लिए अनुवाद हिंदी का, अंग्रेजी का, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, आप कोई भी अनुवाद पढ़ लेना, आपको गीता ऊपर ऊपर समझ में आएगी। लेकिन जो संस्कृत का जो भाव है वो आपको यदि समझना है तो आपको थोड़ा वो संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है। बहुत अद्भुत उपदेश किया भगवान ने।
और यहां

0: पर भी बालक नचिकेता को देखना अद्भुत पात्र है, और वो ऐसा अद्भुत पात्र कि आपको ऐसा लगता है कि वो अर्जुन से भी आगे का है, अर्जुन से भी आगे का पात्र है। नचिकेता इस नाम से ही आपको मालूम पड़ता है कि वो कितना बड़ा, कितना आध्यात्मिक पृष्ठभूमि वाला था। जैसे अर्जुन श्रवण करते हैं, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं अर्जुन, अर्जुन माने ऋजु, ऐसा सरल, बिल्कुल सीधा साधा। अध्यात्म में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका भाव है ना, वो है सरलता। आप टेढ़े मेढ़े हैं तो आपको अध्यात्म में आने के बाद भी सीधा ही होना होगा। ये अध्यात्म ये टेढ़े लोगों का नहीं है, ये अध्यात्म सरल लोगों का है, ऋजु विनम्र, जहां भी जाए वहीं फिट हो जाए, आगे भी और पीछे भी और मध्य में भी। और यहां नचिकेता का भी यही अर्थ है। नचिकेता में चीय धातु है, चीय चयने धातु से ये नचिकेता शब्द बनता है, और इसका अर्थ होता है न केतयति इति नचिकेता, न चिनोति इति नचिकेता। अब आप इस बात को ध्यान से श्रवण करेंगे। आप चीय चयने, चयन का मतलब होता है जैसे वस्तुओं का चयन करना, उठा लेना। मान लो कि आपके गले में हार है, आपके गले में रुद्राक्ष की माला है, आपके गले में स्फटिक की माला है, और वो स्फटिक की माला टूटी तो मणि आपके बिखर जाते हैं, और बिखरे हुए मणियों को जब आप उठाते हैं ना, तो उसको बोलते चयन करना, उठा लेते हैं, और आप उठा करके जमा कर लेते हैं, उसको बोलते हैं चयन। और चयन का अर्थ यहां पर नारायण, जीव जो है ना चयन करता है, विषयों का चयन करता है। जब आपकी इंद्रियां बाहर के पदार्थों को देखती हैं तो फिर विषयों का चयन करती हैं, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का चयन करती हैं, और वो चयन करके अपने हृदय में उसको स्थापित कर देती हैं। हमारी आंख बाहर जाती है और बाहर के पदार्थों को देख करके बाहर के पदार्थों को अंदर ले आती है। आपने किसी व्यक्ति को देखा, आप देखने के बाद वो व्यक्ति अंदर रहता है कि बाहर रहता है? अंदर आ गया। आपने सुना, किसी ने गाली दी, अब वो गाली बाहर नहीं रहती, वो गाली अंदर आ जाती है। इसको चयन बोलते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आग्रह, दुराग्रह, बहुत सारी चीजों का हम चयन करते हैं अपने माइंड में, अपने हृदय में हम उसको स्टोर कर लेते हैं। राग, द्वेष, विकार, वासनाएं पैदा हो जाती हैं। बाहर के पदार्थ हमारे भीतर वासना को पैदा करते हैं, बाहर के पदार्थ हमारे वासना को जगाते हैं, बाहर के पदार्थ हमारे इंद्रिय भाव को जगाते हैं, अंदर कुछ ऐसी चीजें बनती हैं हमारे भीतर, इसको बोलते हैं चयन करना, इसको बोलते हैं चयन करना। और नचिकेता का अर्थ है न चिनोति इति नचिकेता, माने जो चयन नहीं करता है, उसकी इंद्रियां बाहर के पदार्थों को तो देखती हैं लेकिन वो अंदर चयन नहीं करती। मैं आपको एक वेदांत का एक भाव बता देता हूं। वेदांत में दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक प्रमाता और दूसरा साक्षी। प्रमाता का मतलब होता है जो प्रकर्षीन, अच्छी प्रकार से नापता है ना, उसको बोलते प्रमाता। प्रमाता का अर्थ होता है प्रमेय सापेक्ष, प्रमाण सापेक्ष, जो ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है, ज्ञाता, उसको बोलते हैं प्रमाता। और ये प्रमाता जो स्वभाव है ना, नापने का स्वभाव है, नापने का, ये जीव का स्वभाव है। हमारी इंद्रियां जब बाहर जाती है ना, तो क्या करती हैं, रूप को नाप लेती हैं, हमारी कान शब्द को नाप लेती हैं, हमारी नाक गंध को नाप लेती हैं, हमारी त्वचा स्पर्श को नाप लेती हैं, रसना रस को नाप लेती है। बाहर का जो भी पदार्थ इंद्रियों के सानिध्य में आता है तो उसको नाप लेती है, नापने का स्वभाव है। और क्या अद्भुत, आप किसी आदमी को देखते हैं तो उसकी नाक नाप लेते हैं कि नहीं? आप चट से उसके नाक को टेप लगा के नाप लेते हैं गिरीश जी? चट से आप बिना पूछे आप नाप लेते हैं, ये इतनी चौड़ी है, इतनी लंबी है, ये काला है, ये गोरा है, 5 फुट ऊंचा है, आप देखते ही नाप लेते हैं पूरा का पूरा डिजाइन आप नाप लेते। अब जैसे आप नाप लेते हैं ना, वो चीज फिर बाहर नहीं रहती, वो चीज आपके अंदर आ जाती है। ये प्रमाता का, ये जीव का स्वभाव, ये नापने का जो स्वभाव है ना, ये अच्छा स्वभाव नहीं है। आप बिना पूछे दुनिया के पदार्थों को आप नापते रहते हैं और ये कोई अच्छा स्वभाव नहीं, ये जीव का स्वभाव, ये प्रमाता का स्वभाव। लेकिन एक दूसरा भी स्वभाव है जिसको बोलते हैं साक्षी। साक्षी का मतलब होता है किसी भी चीज को जो नापता नहीं है, अन्वेषण विरहित जो दृष्टि है उसको बोलते हैं साक्षी। और जो अन्वेषण की जो दृष्टि है ना, उसको बोलते हैं प्रमाता। आप साक्षी में माने आप दुनिया के किसी भी पदार्थ को नापते नहीं, आप केवल देखते हैं। और जब आप केवल देखेंगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा? आपको नापे बिना मालूम कैसे पड़ेगा कि स्त्री है कि पुरुष है? अरे भाई सूत्र है ना ये, आप यदि नहीं नापोगे और ये स्त्री और पुरुष का जो अंतर है ना, ये नापने का अंतर है कि बिना नापे अंतर है? भाई नापने का ही तो अंतर है। हमारी इंद्रियां बाहर जाके बाहर के पदार्थों को ना नापे, स्त्री और पुरुष को ना नापे, तो बाहर मालूम पड़ेगी क्या स्त्री या पुरुष? साक्षी का मतलब यही होता है। जैसे सुखदेव जी महाराज निकले और सुखदेव जी महाराज जी 16 वर्ष की उम्र है, वन में जा रहे हैं, भाग रहे हैं, रास्ते में स्त्रियां स्नान कर रही हैं, लेकिन वहां से जब सुखदेव जी महाराज गुजरे तो उनको क्या मालूम पड़ा? उनको स्त्रियां मालूम पड़ी कि पुरुष? अरे उनको तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, उनको स्त्रियां नहीं मालूम पड़ी, न वहां स्त्री भाव और न वहां पुरुष भाव, क्योंकि वह बिना नापे साक्षी की भाव में है। एक बार बुद्ध बैठे थे ध्यान में, आंखें खुली हैं, अर्ध अवस्था में हैं, किसी व्यक्ति ने आकर के वो पूछा, भगवान आप कब से हैं? बुद्ध ने कहा घंटों से हैं बैठा हूं। बोले यहां से एक 10-15 मिनट पहले एक स्त्री गुजरी है, आपने देखा है क्या? बुद्ध ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा गुजरा तो जरूर है, कोई गुजरा तो जरूर है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि स्त्री थी कि पुरुष था, क्योंकि नारायण वहां नापने का भाव ही नहीं ना। ये बहुत गहरी दृष्टि है, बहुत गहरी दृष्टि। आपके सामने से वस्तु गुजर जाए लेकिन आप उसको नाप नहीं रहे हैं, आप उसका कोई अन्वेषण नहीं कर रहे, आप केवल देख रहे हैं, इसको बोलते हैं साक्षी दृष्टि, साक्षी भाव। और साक्षी भाव में जब आप दुनिया के पदार्थों को देखते हैं तो केवल अस्तित्व मालूम पड़ता है, वो पदार्थ स्त्री है, पुरुष है, छोटा है, बड़ा है, सुंदर है, कुरूप है, आपको कुछ नहीं मालूम पड़ता है। और जब साक्षी भाव में होंगे ना तो फिर बाहर के पदार्थ भीतर नहीं आते हैं, बाहर के पदार्थ संस्कार का निर्माण नहीं करते हैं फिर। इसलिए इसको जय कृष्ण मूर्ति ने दृष्टांत देकर समझाया, उन्होंने इस साक्षी भाव को दृष्टांत दिया आकाश में उड़ते हुए पक्षी का। आप जब जमीन पर चलते हैं तो आप अपने चिन्ह छोड़ते जाते हैं, आप जमीन पर चल रहे हैं लेकिन आपको पता है, आपको यदि कोई खोजने वाला होगा तो खोज के निकालेगा। आप चल रहे हैं जमीन से, आपके पदचिन्ह अंकित होते जा रहे हैं। आप सुने ना कि जब गोपियों को या गोपों को भगवान श्याम सुंदर को ढूंढना होता था तो भगवान के पदचिन्ह देखते थे, और पदचिन्हों को देखते देखते देखते देखते मालूम पड़ता था कि भगवान किस वन में है। आप जब चलते हैं तो आप पदचिन्ह अंकित करते जाते हैं, लेकिन आकाश में जब पक्षी उड़ान भरता है तो वहां पर कोई पदचिन्ह अंकित होते हैं क्या? वहां कोई पदचिन्ह अंकित नहीं। ये गरुड़ की उड़ान, ये पक्षी की उड़ान की तरह साक्षी भाव है। आप देख भी लेंगे, आप सुन भी लेंगे, आप चख भी लेंगे, लेकिन आपके अंतःकरण पर उसके कोई संस्कार बनेंगे नहीं। और यही तो है न न कश्चित करोमीति, है ना, नहीं कश्चित करोमीति युक्तो मन्नीत तत्वित पश्य शृण्वन स्पृशय जिघ्रन नश्नन गच्छन स्वपय श्वसन। अरे वही नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्नीत तत्वित, करता हुआ भी वो नहीं करता है, वो खाता हुआ भी नहीं खाता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, क्योंकि वो प्रमाता नहीं, वो साक्षी है। साक्षी अब वहां केवल देखना मात्र रह गया है, वहां कोई अन्वेषण नहीं है, वहां द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व नहीं। ये द्वंद्वात्मक जो संसार है, ये बिना परमात्र दृष्टि, बिना प्रमाण दृष्टि उसको नापना संभव नहीं है। इसलिए ये साक्षी भाव आप दे सुखदेव जी महाराज साक्षी भाव में, बुद्ध साक्षी भाव में है। और आज ये नचिकेता है ना, ये भी क्या है, इसी की योग्यता रखते हैं, इसी की योग्यता रखते हैं। आ साक्षी में दुनिया गुजर जाए लेकिन उसका प्रभाव उनके मन पर नहीं पड़ता है, साक्षी की दृष्टि में है। इसलिए न चिनोती इति नचिकेता, जो बाहर के पदार्थों का चयन कर अपने भीतर प्रवेश करने नहीं देता है, कहां से प्रवेश करने देगा, वो तो अन्वेषण करता ही नहीं। जब वहां आचार्य यम ने कहा ये लो वो लो, हाँ लिया कुछ?
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Good luck, guys.